0: Five items, chaats, tandoor, biryani, fusion favorites, and plenty more to discover. Fusion Republic, now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion. Floors clean.
1: Check.
0: Windows clean.
1: Check.
0: Kitchen clean.
1: Check.
0: Air ducts clean.
1: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
2: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
3: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
5: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
4: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
6: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
0: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: किसी ने कहा है, किसी का बदल जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना उसकी पुरानी बातें याद आना। वो बातें बिल्कुल वो दिल को लगती हैं, तकलीफ देती हैं। कोई बदल जाए तो शायद इतनी तकलीफ ना हो। स्टार कलाकार को मुबारकबाद देते हैं। चलिए, एक स्टार है जिनका जन्मदिन आने वाला है और मैं आती हूँ हफ्ते के एक दिन फ्राइडे के फ्राइडे 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट लेकर अपना शो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन आज किसी का जन्मदिन नहीं है, आज के आखिरी मतलब अगस्त के आखिरी दिन में है इनका जन्मदिन। चलिए गाने से शुरू करते हैं, फिर मैं उनके बारे में कुछ बताती हूँ आपको।
1: म्यूजिक

this song also going out to Safi, listening to Fun Asia Radio. Hi Safi, aapke liye wo gana totally dedicated hai, jinka janam din mana rahe hain aaj. Star kalakar ko mubarakbad de rahe hain, kisi aur star jo hamare listener hain, aap kisi ka janam din ho to zarur phone uthayega, number dabayega 972-235-5555, studio ka number. Gurgaon se FTII, phir Mumbai, no filmy family, no typical hero launch, aur aaj he's one of those actors jinka naam screen par aaye to you expect a performance, ki yaar performance to hoga, स्टोरी अच्छी होगी, अच्छा ये पिक्चर होगी. शाहिद में इंटेंसिटी, न्यूटन में सिंप्लिसिटी देखा, बरेली की बर्फी का हिलेरियस प्रीतम विद्रोही, जाना इन्हें. स्त्री जो अभी अभी आप गाना सुन रहे थे, लवेबल विकी, विकी प्लीज इफ यू रिमेम्बर, और श्रीकांत में कंप्लीटली डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन. समझ तो गए होंगे, बात कर रही हूँ राजकुमार राव की, जो 31st of August अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं. और हमें सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता है राजकुमार राव का, ही डिडंट चेंज हिमसेल्फ टू बिकम अ बॉलीवुड हीरो, जो थे वो थे, ही हेल्प चेंज व्हाट अ बॉलीवुड हीरो कुड लुक लाइक. एक आम आदमी जो आपका नेबर हो सकता है, जो कोई भी हो सकता है, हीरो सोचा ही नहीं किसी ने, लेकिन इन्होंने अपने आप को बदला नहीं, ये बदल दिया कि ऐसा भी हो सकता है हीरो. सो विशिंग हिम दिस इनक्रेडिबल वर्सटाइल राजकुमार राव अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. एडवांस ही मैं विश कर रही हूँ, क्योंकि आती हूँ मैं जुम्मे के जुम्मे एवरी फ्राइडे नाइट 5 से 8, तो क्यों ना इन्हें यहीं पर सेलिब्रेट कर लिया जाए. पता है ये वाला गाना जो है, और ये वाली फिल्म शायद आपने नहीं देखी होगी, राजकुमार राव की है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया इन्होंने, इनके साथ कृति खरबंडा है, और बहुत ही अमेजिंग फिल्म थी शादी में ज़रूर आना. आपने देखा है तो यू नो इट वॉज अ गुड फिल्म, और अगर नहीं देखा है तो यू कैन एक्चुअली गो एंड वॉच फॉर हिज बर्थडे. I'm not playing the ow ow, okay? That's also his. Or maybe later.

0: Beautiful, Jogi Hona, बहुत ही खूबसूरत गाना है आर्को का, एंड दैट इज फ्रॉम द फिल्म शादी में जरूर आना. सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो, और अब शुरू होने वाला है आपका वो गेम शो फ्राइडे के फ्राइडे वाला.
1: कर हिंदी हिंदी बोल,
0: ओय ओय ओय ओय, जमहूरी क्या बोलेगा, बोलेगा तो बस हिंदी. अंग्रेजी नॉट अलाउड. ओके, वी कैन अलाउ लिटिल बिट ऑफ उर्दू, बट नॉट अलाउड इज अंग्रेजी. पता नहीं कहाँ से घुसी चली जा रही है, कंफर्टेबल होती जा रही है हमारे हिंदी भाषा में. और इस गेम को खिलाने के लिए मुझे खिताब मिला गया है मोगैम्बो का. अभी अभी जिन्होंने मुझे खिताब दिया था उनका कॉल आया था, जैन साहब का, जिन्होंने मुझे मोगैम्बो और शाकाल का मिश्रण बताया था. यू नो दैट शाकाल एंड मोगैम्बो, मिस्टर इंडिया वाले. एंड मैं बेचारी कहाँ से शाकाल नज़र आती हूँ और कहाँ से मोगैम्बो, बट यस आई एम. तो अगर आप खेलना चाहते हैं तो फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. चलिए जुड़ते हैं ऑन गल हिंदी हिंदी बोल. और ये जो गाना है I just love this.

इसको कुछ भी लिरिक्स कहते हैं, आ गया मुझे आओ कभी हवेली पे, एंड द आंसर इज आ गया. दैट्स सो फनी. और तू बन जा, मैं बन जाऊँ अनुष्का, तू बन जाए कोहली, माई गॉड, कुछ भी जिसको कहते हैं. बट यू लिसन टू इट एंड यू वॉच इट एंड यू स्माइल एंड यू लाफ समटाइम्स एंड यू आर लाइक कुछ भी. 104.9 FM फनी जरी जो सुन रहे हैं. मैं आपकी होस्ट नवनीता, ये 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रहता है आपका मेरा साथ, एंड थैंक यू फॉर दैट. दोस्तों पता है, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. आप अगर म्यूजिक पसंदीदा लोग हैं तो वन एंड ओनली वन सोनू निगम इज कमिंग टू टाउन लाइव इन कॉन्सर्ट. एंड ट्रस्ट मी, आई फील इट इज द बेस्ट कॉन्सर्ट दैट सोनू निगम डज, बिकॉज ही इज इन फुल पैकेज. एंटरटेन करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं ऑडियंस को, एंड द कॉन्सर्ट जस्ट कम्स अलाइव बिकॉज ही इज लाइव. एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन. सैटरडे सितंबर 26 एट 6:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सस इवेंट सेंटर इन एलन. योर फेवरेट सॉन्ग, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल लाइव लाइव लाइव. टिकट्स अवेलेबल है एट टिकट मास्टर. आप और भी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 855-360-SHOWS. अधिक मैंने बोल दिया है और उस अधिक से फोन उठाए, नंबर दबाइए, 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल. लेकिन रेवोल्यूशन को याद रखिए, सोनू निगम लाइव आ रहे हैं. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है फन एशिया नेटवर्क, यानी कि हम. तो 972-235-5555.

0: हे ये सॉन्ग तो था ना बैड न्यूज का था, विकी कौशल, तृप्ति डिमरी. ओ माय गॉड, दिस वाज अ मूवी विच वाज वंस अपॉन अ टाइम बैड न्यूज. चलिए लेती हूँ मैं अपने कॉलर को फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल. गुड इवनिंग फनी शरीर, जो आपका स्वागत है गर्ल हिंदी हिंदी बोल पर. हाय, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो.
1: हाँ जी,
0: हाँ
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: हाँ जी, आप प्लीज स्पीकर फोन से हट जाइए.
1: ओ अच्छा, एक मिनट, मैं ड्राइव कर रही हूँ
0: ओह
1: तो ठीक है.
0: या दैट्स ब्यूटिफुल, यू नो देयर सो मच नाइसर, योर वॉइस इज सॉफ्टर. इतनी सारी तूफान चल रही थी आपके इर्द गिर्द बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस.
1: अभी ठीक है?
0: हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास.
1: ओके,
0: सो व्हाट्स योर नेम?
1: रश्मि.
0: रश्मि, वेरी नाइस. तो आपका वक्त शुरू किया जाए रश्मि जी.
1: ओके जी.
0: ऑलराइट जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इतनी जोर से हंसी आ गई आपको. ऑलराइट, बट योर टाइम हैज स्टार्टेड. ओके, डोंट मेक अ मिस्टेक. आपको हिंदी बोलना है, बस हिंदी. ओके.
1: हाँ जी, हाँ जी.
0: वेयर आर यू गोइंग?
1: मैं घर जा रही हूँ.
0: वेरी नाइस, एंड इट वॉज सो नाइस. आपने मुझे बहुत सारी अच्छी वाली कॉम्प्लीमेंट्स दी थी, विच आई लव्ड.
1: वो तो है ही. आप
0: वो तो है
1: जो
0: ही.
1: भी बताया था वो सब सब और उसके ऊपर 100% और भी ज्यादा.
0: अच्छा, सो स्वीट, थैंक यू सो मच. तो फिर आप कब से सुन रही है फनीजा रेडियो?
1: मतलब 10 साल से शायद.
0: हाँ, राइट, यू आर हियर सिंस 10 years और मोर देन दैट.
1: हाँ जी.
0: वेरी नाइस. तो फिर तो हमेशा से आप फनीजा सुन रही हैं?
1: इसके पहले तो ये सलाम नमस्ते था ना.
0: ये सलाम मतलब उसको भी 20 साल हो गए यार. फनीजा को 20 years हो गए हैं,
1: हाँ, उससे पहले से मैं सुन रही हूँ.
0: मतलब आप तो बहुत साल हो गए यहाँ रहते हुए. लाइक
1: हाँ,
0: लेजेंड है आप.
1: बहुत सा बोल सकते हैं.
0: बोल, तो आप ही बोल रही है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? यू आर ओनली सेइंग दैट. यू आर सो फनी, माय गॉड, यू नो यू हैव अ कंटेजियस लाफ्टर.
1: अच्छा, बोलते हैं काफी लोग, काफी दोस्त बोलते हैं.
0: ऑलराइट, सुपर, वेरी नाइस. तो फिर क्या करती हैं वैसे आप रश्मि जी? सॉरी रश्मि,
1: मैं घर चलाती हूँ.
0: घर चलाती हैं? अच्छा, वेरी नाइस.
1: मैं अपने घर की पता नहीं कैसे बोलूं, वो अंग्रेजी आ जाएगा. मैं घर चलाती हूँ.
0: अच्छा, वेरी नाइस. घर ही चलाती हैं, वाह, आप ही के उस पे
1: घर
0: चलता
1: के
0: है.
1: अंदर जो भी लोग हैं सबको चलाती हूँ.
0: वेरी नाइस. आप अगर इतने अच्छी होनहार चलाने वाला मिल जाए तो मतलब बहुत अमेजिंग है आपका घर.
1: शायद है.
0: हाँ,
1: मुझे भी वैसे ही लगता
0: है ना,
1: कि
0: यू नो, ओ माय गॉड, यू नो,
1: सॉरी.
0: ओ नो,
1: हो जाता है, हो जाता है.
0: बड़े बड़े शहर में. बट स्टिल आई गिव यू अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन.
1: अच्छा, थैंक यू सो मच.
0: ऑसम. यस रश्मि, डोंट गो एनीवेयर. आई विल प्ले अ सॉन्ग फॉर माय लिसनर्स और फिर मैं आपका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ. ओके.
1: हाँ जी, थैंक यू सो मच. प्लेजर टॉकिंग टू यू.
0: या बिकॉज आपके साथ ना मैं थोड़ी आई गॉट कैरिड अवे और बस ऐसा लगा कि मुझे तो एंड करने की जरूरत ही नहीं है, यू नो. सो देयर यू गो.
1: दैट्स सो स्वीट.
0: ऑलराइट, सो आई विल जस्ट टेक योर इन्फॉर्मेशन.
1: श्योर.

0: Love this song, दोस्तों 104.9 FM Funny Jar Radio पर धुरंधर का गाना शरारत सुन रहे थे आप. और यार धुरंधर तो पूरा धुरंधर ही निकला, फुल फ्लेजेड हिट बिट से एब्सोल्युटली दुनिया को उड़ा दिया है. अमाउंट ऑफ कलेक्शन दिस मूवी हैज डन, यू नो, एक ही शोले बनी है और एक ही धुरंधर. रीमेक नहीं बन सकता शोले का, और धुरंधर माय गॉड आप बहुत बार भी नहीं देख सकते धुरंधर, वो मैं बोल सकती हूँ, बट एक बार में ही उसने छक्का लगा दिया है. फन पिज्जा
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
3: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
5: उमर ख्वाजा.
6: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
7: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
11: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.

वेलकम वेलकम वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। 5 साल स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रहता है मेरा ये फ्राइडे वाला शो जिसका नाम है

0: शुक्र है यार, फ्राइडे आ गया है। जो करना है कर लो, जी लो अपनी जिंदगी, सिमरन या जो भी हो आपका नाम, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग फन। आज ही है, इसी वक्त ही है, कल का क्या इंतजार। पर फ्राइडे होने पर कल का किसको इंतजार यार, आज ही पूरा वीकेंड का जितना जीना है जी लो। लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉल को ऑन फनीजा रेडियो। गुड इवनिंग फनीजा रेडियो पर आपका स्वागत है। व्हाट्स योर नेम?
1: हेलो, कैन यू हियर मी?
0: आई कैन हियर यू। व्हाट्स योर नेम?
1: या माय नेम इज ध्रुव।
0: ध्रुव, ध्रुव आप क्या स्पीकर फोन पे हैं?
1: हेलो,
0: या कैन यू रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्पीकर फोन?
1: ओह ओके, एक्चुअली आई एम ड्राइविंग, गिव मी वन सेकंड।
0: आई एम सॉरी,
1: नो वरीज, गिव मी वन सेकंड।
0: कितने सारे छोंक की आवाज आई, यू नो इट वॉज लाइक समबडी तड़का लगा रहा है, बिकॉज दिस इज ऑल ऑन द स्पीकर फोन, वी गेट ऑल दैट डिस्टर्बेंस, तो इसी वजह से हटना जरूरी होता है स्पीकर फोन से। बट यू नो अभी भी, लेट मी प्ले अ सॉन्ग फॉर माई लिसनर्स, यू सेट योर सेल्फ अप, ओके? And I'll take you on air.
1: Sure, thank you.

0: The twist.
1: Love the song, the twist song, Haan Main Galat. Kartik Aaryan, Sara Ali Khan, Pritam ka music hai. Love Aajkal ka second bhaag. Sun rahe 104.9 FM, Fun Asia Radio on this amazing Friday night. Thank God it's Friday. Chaliye, Dhruv intezaar kar rahe hai for Girl Hindi Hindi Bol. Leti hoon main unhe on air.
2: Hello.
1: Dhruv, welcome back to Fun Asia Radio. Aap ka situation ab ekdam perfectly samla hua hai.
2: Yeah, thank you for having me. Yeah, it's all settled now.
1: So, aap girl Hindi ke liye taiyar hain?
2: Haan, taiyar.
1: Your time starts now, Dhruv. Iske baad aap Hindi hi bolenge, all right?
2: Theek hai.
1: Theek hai. To fir kidhar ja rahi hai aapki sawari?
2: Main gaadi chala ke apne dost ke जन्मदिन के अवसर पर जा रहा हूँ.
1: वाओ मैन, आपके दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो व्हाट इज द सेलिब्रेशन ऑल अबाउट?
2: जन्मदिन है ऐसे अभी जो बोला मैंने.
1: हाँ, जो जन्मदिन है
2: वही अवसर है. हाँ. वही पर जाकर थोड़ा मजा करेंगे.
1: हाँ, सो क्यूट. आपके एक बहुत अच्छी वाली एक्सेंट चाहिए. किधर से आई है? वेयर डिड यू मूव अराउंड?
2: हाँ
1: हाँ, किधर किधर रहे हैं आप दुनिया में?
2: दुनिया में बहुत जगह में रहा हूँ.
1: और अपनी हिंदी कहाँ से सीखी आपने?
2: हिंदी तो अपने विद्यालय से स्टार्ट किया.
1: आरंभ किया था. आराम नहीं किया था, काम किया था. वेरी नाइस. ओ माय गॉड. फिर क्या हुआ
2: इसके बाद? आरंभ करने के बाद जो बोलना शुरू किया अभी भी बोल ही रहा हूँ.
1: बोल ही रहा हूँ. I like it. But thank you so much. The start was start ended it, but you were so good. Thank you.
2: धन्यवाद. थैंक यू.
1: दुनिया को बता दूं, ध्रुव साहब कि अभी आप फोन पे हैं और आपकी वाइफ आपका फोन पकड़ के आपके कान पर you know, so that it doesn't go into speaker phone. नहीं बताती हूँ, छोड़ देती
2: हूँ. Due to technical difficulty.
1: Due to technical difficulty. Amazing, I love it. Thank you. You have a wonderful evening and a great weekend.
2: Yeah, thank you. Bye.
1: Well, may your love grow like this forever. You know, इसको प्यार ही तो कहते हैं ना. उनको खेलना है गेम रेडियो पर. He was trying a lot to come off the स्पीकर फोन बट हो नहीं रहा था. सो फोन को फोन में डालकर कान पे तो पकड़ना पड़ेगा, लेकिन आप ड्राइव कर रहे हो तो करोगे कैसे? दैट इज वेयर द वाइफ कम्स इन हैंडी, होल्डिंग दैट फोन कॉल ऑन फॉर यू एंड वेटिंग फॉर यू टू गेट टू विन गर्ल हिंदी निबो. इट्स नॉट अबाउट विनिंग, यू नो इट. इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स ऑल अबाउट बींग on Girl Hindi Hindi Bol. Love it. Love the way you guys do this with me. वैसे पता है, Fun Pizza Kitchen has launched a brand new Mexican-inspired pizza lineup. And these aren't just pizzas. They are a full-on flavor fiesta. From the fresh fiesta veggie to the fiery polo loco, the seafood pack sana camarón. Every bite is bold. यार ऐसे कैसे pronounce करते हैं मुझे नहीं पता. मैं try कर रही हूँ.

Fiesta Veggie, to the Fiery Polo Loco, the Seafood Pack Sana Cameron. Every bite is bold. यार ऐसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता. मैं ट्राई कर रही हूँ बहुत स्टाइल मार के, जैसे कि अभी अभी हमारे साथ जुड़े थे विथ हिज एक्सेंट. आई एम ऑल्सो ट्राइंग, बट ये एक्साइटिंग है, मेड टू इम्प्रेस है. हेड ओवर टू फन पिज्जा किचन एंड टेस्ट द न्यू ऑब्सेशन फॉर योर सेल्फ. न्यू फ्लेवर्स, न्यू ऑब्सेशन. फॉर मोर डिटेल्स आप विजिट कीजिए funpizzakitchen.com. और लेकर चली गई रश्मि जी $10 गिफ्ट कार्ड फन पिज्जा किचन का बाय विनिंग गर्ल हिंदी हिंदी बोल. ऐसे भी होते हैं लोग जो जीत भी जाते हैं यार, ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या बात. मैं

0: I get to I remember and recollect this name very nicely, but आप गल हिंदी हिंदी खेलना
1: विजय
0: चाहते
1: दीना
0: हैं?
1: नाथ चौहान.
0: यस,
1: I'm sorry.
0: विजय
1: See,
0: दीना नाथ
1: I knew
0: चौहान.
1: that.
0: ऑल राइट, तो आप गल हिंदी हिंदी खेलना चाहते हैं,
1: जी हाँ.
0: तो चलिए आपका वक्त शुरू किया जाता है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. विजय दीनानाथ चौहान, कितनी बार देखी आपने ये फिल्म?
1: जी मैंने ये कौन सा चलचित्र था वैसे ही.
0: ये कौन से चलचित्र, आप बताइए. विच वॉज दिस मूवी?
1: मेरे ख्याल से ये जनाब भाई हैं जो उनका नाम ये चलचित्र का नाम अग्निपथ था क्या.
0: यस, 2 बार आई थी अग्निपथ, एक 2012 में आई थी और फिर एक पहले भी आई थी अमिताभ बच्चन के साथ. बट देन
1: वैसे
0: यस,
1: नवनीता जी आपकी हिंदी भी अच्छी हो गई है वैसे ये कार्यक्रम करते
0: है
1: करते.
0: ना, मैं क्या करूँ, आप जैसे इतने
1: आपकी
0: शातिर,
1: व्याकरण भी अच्छी होते जा रही हो.
0: हाँ, आप इतने शातिर शातिर मेरे पास जुड़ने के लिए आ जाते हैं, मेरे जो फोन लिसनर्स
1: आपके
0: हैं
1: श्रोतागण
0: मेरे श्वेतागण, अच्छा, मेरे को सप्लाई भी आ जाता है अच्छे अच्छे हिंदी शब्दों के. सो व्हाट डू यू डू विजय साहब?
1: जी, मैं एक अभियंता हूँ.
0: ओके, तो फिर आज क्या हाल था अभियंता का? व्हाट टाइम डिड दिस अभियंता गेट ओवर?
1: जो बस वही दैनिकचर्या है, सुबह जाना है शाम को आना है
0: कितने
1: और बस
0: बजे
1: वापस
0: तक?
1: जा रहे थे. आपके साथ हो जाते हैं थोड़ी देर रास्ते में आते हुए.
0: आते हुए थोड़ी सी चर्चा, वार्तालाप, वट एवर यू कॉल
1: जी
0: इट,
1: जी
0: है ना. सो व्हाट टाइम डू यू यूजुअली रिटर्न फ्रॉम वर्क?
1: जी मेरा ऐसा कोई कोई एक
0: टाइम
1: स्थापित
0: नहीं
1: समय
0: है.
1: नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही कभी 6 7 8
0: माय गॉड, दैट्स
1: कभी
0: लेट.
1: भी काम आप जब काम खत्म होता है तो करना पड़ता है
0: नो, ऐसे तो गलत
1: कब
0: है.
1: कभी.
0: यू हैव टू हैव 8 8 आवर्स.
1: जी.
0: डोंट यू हैव दैट काइंड ऑफ क्या, 8 से यू स्टार्ट
1: जी
0: लेट?
1: नहीं अब काम है तो काम को पूरा करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए
0: ऐसे थोड़ी होता है.
1: कभी.
0: आपको
1: हाँ
0: क्या बहुत सारे ओवर टाइम मिल जाते हैं इसकी वजह से?
1: नहीं वो अब हमारे काम का प्रकृति वैसा है, क्या करें. अब वो अब जैसा काम होता है उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है, तो
0: कभी
1: जब
0: कभी यही सोच
1: काम
0: लेते काम
1: काम
0: है.
1: समाप्त होता है तो उसके हिसाब से करते हैं.
0: सो एंड यू ड्राइव लॉट?
1: जी मैं चला लेता हूँ गाड़ी, बस आपका साथ हो जाता थोड़ा रास्ता आसान हो जाता.
0: वाह वाह, वेरी नाइस. तो मैं आसान करती हूँ तो थैंक यू, बट टेल मी हाउ
1: आप
0: लॉन्ग डू यू
1: दोनों का
0: ड्राइव?
1: रास्ता आसान करती है. नहीं बस आधे घंटे 20 25 मिनट ऐसी.
0: मिनट, 20 मिनट? ओके, अब थोड़े से खुल गए थे थोड़ा.
1: नहीं वैसे ये विदेशी शब्द में आ जाता है, ये
0: हाँ, आ जाता है
1: विदेशी
0: मिनट,
1: शब्द में आता है. नहीं
0: विदेश में नहीं
1: कुछ
0: आता,
1: शब्द
0: हिंदी
1: होते हैं,
0: में.
1: नहीं देशज विदेशज होते हैं, तो कुछ शब्द होते हैं जैसे अंग्रेजी में गुरु पंडित ये अंग्रेजी में आ जाते हैं ना, उसी तरह से कुछ ये शब्द विदेशज होते हैं हिंदी में. तो अब मैं ये शब्द बोलूंगा तो आप मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन वैसे कुछ शब्द हैं वैसे जो
0: मिनट.
1: हिंदी हिंदी हिंदी में उसकी अनुमति है, तो वो कुछ शब्दों का स्रोत विदेश में होता है, तो कुछ शब्दों को विदेशज बोले जाते हैं. जैसे चिकित्सक का
0: अच्छा, मैं
1: एक
0: बोल दूँ
1: अंग्रेजी
0: अब,
1: में.
0: मिनट इज अलाउड भाई, मिनट मिनट हिंदी ही शब्द है. मिनट को आप और कुछ
1: हाँ
0: हिंदी में नहीं बोलते, मिनट बोल देते, थोड़ा सा मिनट कर देते हैं, बट इट इज अलाउड. सो ऑसम, विजय जी आप फिर से जीत गए. यू यू आर यू इंजॉय द वार्तालाप और आपको बहुत मज़ा आता है अपनी फुल फ्लेजेड कोशिश हिंदी, जो आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं. वैसे कहाँ से आपने हिंदी सीखी है?
1: मैं भारत से सीखा हूँ.
0: हाँ, वो तो समझ आ रही है, लेकिन भारत बहुत
1: नहीं
0: बड़ा
1: नहीं
0: है.
1: मतलब नहीं वैसे तो हिंदी में मेरी रुचि रही है, तो इसलिए भाषा में रुचि रहती है. तो वैसे आप एक देती हैं एक एक एक मंच देती हैं आप, जिससे हम लोग अपना अपने हिंदी का अपने हिंदी की
0: प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट थैंक यू सो मच.
1: अभ्यास नहीं, नहीं अभ्यास के अलावा
0: ओके ओके हो गई बोलनी, बट थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड यू हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड. थैंक यू, बाय बाय. ओ माय गॉड, सीरियसली इसी को अभ्यास सही बोलूं तो ये अभ्यास ही करते हैं हमारे फनी जबर आकर अपनी हिंदी की. बट सुपर विजय, आप जो भी बोलो यू स्पीक वेरी वेल एंड यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर हिंदी. मजा आ जाता है ऐसे जो दिग्गज हिंदी स्पीकर्स के साथ बात करके.

0: सुपर दैट सॉन्ग 104.9 FM फनीजत रेडियो सुन रहे हैं और तेरे प्यार में. इसमें एक्चुअली रणबीर कपूर थे. तू झूठी मैं मक्कार ये फिल्म एंड आई रियली लाइक हिम इन दिस वन. लेती हूँ मैं अपने अगले कॉलर को ऑन फनीजा रेडियो. गुड इवनिंग फनीजा रेडियो पर आपका स्वागत है. नाम बताइए प्लीज.
1: हाय गुड इवनिंग, माय नेम इज विजय.
0: विजय. ऑलराइट विजय साहब. ओके सो

You know, this is Rasha Thadani, Ravina Tandon's daughter. I actually thought she's a great actress. Bahut acha dance karti hain, bahut acha acting karti hain. Kyun abhi tak aur movies mein nahi aayi? You know, like Ravina Tandon, jab wo patthar ki phool unhone pehla kiya tha, phir gayab ho gayi thi. And then we like, oh my god, she's so good. Why has she just disappeared? Tab samajh nahi paaye the ki baat kya hai, but she came back all stronger. वैसे आज झेलू रामना की लाइट घर में चली गई, अंधेरा हो गया, तो वो कैंडल लेकर ही वॉज गोइंग टू द रेस्ट रूम. तो रेस्ट रूम जा ही रहे थे, कोई बदमाशी करके आके फूक मार दिया कैंडल को और कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू. झेलू राम बेचारे. और बताओ, इमरजेंसी में भी लोगों को मजाक सूझता है. बेचारे झेलू राम. सुन रहे हैं 104.9 FM फनीशर रेडियो. थैंक यू सो मच ट्यून इन करने के लिए. और एक इम्पोर्टेंट सी बात बतानी थी आपको, ये कि आप डिस्कवर हिमालयन बाजार इन ग्रैंड प्रेरी सर्विंग द इंटायर साउथ एशियन कम्युनिटी विद ऑथेंटिक ग्रोसरीज, फ्रेश प्रोड्यूस, प्रीमियम हलाल मीट एंड एवरीडे एसेंशियल्स. आप इंजॉय कर सकते हैं हॉट समोसास, पानी पूरी, मसाला चाय एंड कॉफी वाइल यू शॉप. कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं, फ्री डिलीवरी है ऑन ऑर्डर्स ओवर $50 विद इन 5 miles एंड लॉयल्टी रिवॉर्ड्स विद एवरी परचेज. जस्ट ऑफ हाईवे 360 साउथ एट 5103 मग्ना काटा बुलेवार्ड, ग्रैंड प्रेरी, हिमालयन बाजार है नाम. वे एवरी आइल फील्स लाइक होम. और यहाँ पर आप, मैं और ये गाने, ये शाम फ्राइडे इवनिंग जो फील्स लाइक सैटरडे, क्योंकि द वीकेंड हैज कम्प्लीटली ड्रॉप्ड एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद जुड़ने के लिए.

0: सुन रहे 104.9 FM। सॉरी, वक्त देखा मैंने तब रियलाइज़ किया कि जाने का वक्त हो गया है मेरा। यस, 8 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, 5 से 8, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये शो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, फ्राइडे के फ्राइडे आती हूँ, तो अगले हफ्ते फ्राइडे ही आऊँगी। जाते जाते ख्याल ये है, पता है, यस एंड नो आर टू शॉर्ट वर्ड्स विच नीड अ लॉन्ग थॉट। Most of the things we miss in life are because of saying no too early and yes too late. ये yes और no के बीच में फंसे रहते हैं, लेकिन जिंदगी की possibilities immense है। No मत बोलिए ज़्यादा, और yes भी बोलने के लिए बहुत सोचिए मत, because उसी के बीच में जो real life है ना, गुजर जाती है। With that thought, good night, sleep tired, get happy, fresh and bright. Wishing you a flowerful morning, a colorful noon, a joyful evening and a peaceful night. And I know it's going to be a fantabulous day for you tomorrow. Started with a cup of positivity, फिर देखिए दिन बिल्कुल positive ही जाएगा, क्योंकि आप positivity ही attract कीजिएगा. मिलते हो अगले हफ्ते, you take care of yourself. Bye-bye.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: Hocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: It's Hoko.
7: अरे बस भी करो यार।
6: अरे नया रेस्टोरेंट है, पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
7: नाम Hoko हो या Hocho, क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
8: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: जीत उनकी होती है जिनकी नज़र सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
14: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
15: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
16: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
17: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
16: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
17: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
16: इंडिया तक।
17: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
18: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
3: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
18: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
20: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
19: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
20: Fear not, we have the perfect solution.
18: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
17: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com। मोर इन्फो 2148692668। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

मोहब्बत ना पहली होती है, ना दूसरी होती है, ना तीसरी होती है। मोहब्बत ना पहली होती है, ना दूसरी होती है, ना तीसरी होती है। मोहब्बत तो वो होती है कि एक बार जिससे हो जाए, उसके बाद कभी दोबारा नहीं होती है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। मैं हूँ आरजे स्वाति और स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। डैलस नमस्कार है आप सभी सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू योर फन रेडियो स्टेशन 104.9 एफएम। हंसते मुस्कुराते हुए आपके ड्राइव टाइम पर दूंगी आपका साथ और कहूँगी आपसे डैलस कि आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। अच्छा सुनने और सुनाने की होड़ में ये कहना तो भूलना नहीं चाहती कि डैलस आज आपका वीकेंड, आपका फ्राइडे का इवनिंग हो मंगलमय। कैसे हैं आप सब? डैलस एक हफ्ते बाद आपसे मिल रही हूँ। मेरी आवाज जो है वो आपके बात करने से, आपके गुफ्तगू से थोड़ी और खिल जाती है, थोड़ी और महक जाती है, थोड़ी और रोशन महसूस होती है, क्योंकि हम एक वाइब जो है वो एंजॉय करते हैं आज के दिन, जिसका नाम है फ्राइडे वाइब। आज की डेट है अगस्त 28, यानी कि 8वां महीना भी बिल्कुल ख़त्म होने को आया है और डे है फ्राइडे। 8:07 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी पर और नो फिल्टर फ्राइडे में हम सुनेंगे खूबसूरत मोहब्बत से भरे गीत, जिसका एक अपना वाइब है गाइस। ऐसा जो गाना होता है ना, ये गाना ऐसा लगता है कि ड्राइव टाइम पर ऐसे गाने अगर हो तो ये जो ड्राइविंग है यानी कि लॉन्ग ड्राइव में चेंज हो जाए। बस हम चलते रहें, बाजू में अपने हम सफर का साथ हो, कोई टेंशन नहीं हो और बस खुशी खुशी, पीस और पीस।

दोस्तों यारों, आपका क्या है आज का विचार, क्या है आज के प्लान्स? फ्राइडे इवनिंग है, जरूर आपने पार्टी शार्टी करने का सोचा होगा। और कई बार हमारी जो पार्टी होती है वो या तो किसी के घर पर होती है, या तो हम किसी जगह पर चले जाते हैं, या डिपेंड करता है कि हम फैमिली के साथ जा रहे हैं कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो अगर आपका मन है कि आज आप बाहर खाना खाएं, तो फ्लेवर लाउंज चले जाइए। जी हाँ, फ्रिस्को में लोकेटेड है और इसमें कुछ नया ऐड हुआ है। जी हाँ, फ्रिस्को फ्लेवर लाउंज फ्रिस्को इज नाउ सर्विंग ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे, यानी कि आपको मिलने वाला है काफ़ी सारा आइटम फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलीशियस डिशेस एंड एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ्स स्पेशल एंड फ्रेश फ्लेवर्स दैट विल कीप यू गोइंग बैक टू बैक। भाई सब कुछ मिल रहा है केवल 24.99 में, तो आपको जाना ही चाहिए। एंजॉय द बफे ऑन सैटरडे संडे फ्रॉम 12 PM टू 3 PM। आज बफे नहीं मिलेगा, लेकिन कल और परसों जाते हैं 12 से 3 के बीच, तो यहाँ पर आपको मस्त खाने को मिलेगा। वैसे 12 से 3 से एक चीज़ याद आई कि फिल्म जब लगती थी तो एक शो 12 से 3 का भी होता था, है ना? तो टेक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड मेक योर वीकेंड डिलीशियस एट द फ्लेवर लाउंज 5855 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को। आप जाएंगे तो भाई आपके अच्छे अच्छे खाने के साथ साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज भी क्रिएट होगी। एंड मैं तो यही कहती हूँ डैलस कि तिजोरी में अगर कुछ रखना है ना, मतलब तिजोरी में जो हम रखते हैं उसे हम बड़ा संभाल के रखते हैं, तो अगर संभाल के रखना है तो कोई धन दौलत मत रखो, रखना है तो यादें संजो के रखो, ताकि जब मन करे तिजोरी अपनी चाबी से खोली और उन सारी यादों को जीने का मौका मिलेगा। और यादें हमेशा खूबसूरत होती है। आज मेरी आवाज़ को क्या हो गया? तो जो खूबसूरत यादें होती हैं उनको याद करने से ऐसा लगता है कि आप उसी ज़माने में, उसी दौर में, उसी दिन, उसी मौके पर पहुंच गए, और वो आपको बहुत सुकून देता है।

What a beautiful and melodious numbers जो दिल को सुकून दे वो गाने कहलाते हैं और वो गाने दिल से रूह में उतर जाते हैं. डैलिस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ना आपको लाइफ में ऐसे मिलते होंगे, ये मेरा ही एक्सपीरियंस है या आपका भी है, आप मुझे बताइएगा. जैसे अगर आप मोटे हैं, ठीक है, तो आपकी आसपास के जो लोग होते हैं ना, मतलब जो आपकी सखी सहेलियां होती हैं, खासतौर पे लड़कियों में ज़्यादा होता ही है कि वो जो आएंगे ना, वो आपको, आप कितना भी कहते रहेंगे कि यार मैं मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो वो आपको ज़बरदस्ती कहेंगे अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे नहीं रे बिल्कुल ठीक ही तो दिखती है तू, इतना मत सोच, इतना मत सोच. फिर क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं दबे जुबान से वो बोल जाते हैं कि ज़रा सोच अपने बारे में, कर कुछ. फिर आपको एक दिन यू नो धीरे धीरे करके आप चार्ज हो जाते हो. चार्ज होने के बाद आप ये फैसला कर लेते हो कि भाई आप पतले हो जाओगे. फिर आप पतले होते हो बहुत दिल दुनिया जहान झोंकने के बाद. फिर वही लोग आपको 6 महीने के बाद मिलते हैं और फिर आपसे कहते हैं यार तू कितनी पतली हो गई, कितनी पतली हो गई. अब देखो ये तो हुआ, ठीक है, इससे जैसे ही आपका चुप वाला चेहरा मुस्कुराने को तैयार होता है, जब ये क्रेडिट आप लेने की कोशिश करते हो और थोड़ा प्राउड फील करने की कोशिश करते हो, तुरंत उसका उनका अगला कमेंट आता है. और वो अगला कमेंट होता है यार पर पता है तू पहले ही ठीक थी, अरे अभी तेरे चेहरे का पूरा ग्लो ही चला गया है, ऐसे तो मुझे नहीं होना बाबा, मैं तो ना हूँ ऐसे, भाई मैं इतनी मेहनत नहीं करूँ ऐसे, क्या है ना मुझे ग्लो भी तो इम्पोर्टेंट है भाई, सुंदर भी तो दिखने चाहिए. आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये पूरी तरह से मैनिपुलेशन है. खुद तो कर सकना है नहीं, लेकिन दूसरों को कैसे एक सेकेंड के अंदर आपको नेगेटिव बना देना है. और ऐसे लोगों को ना डैलस आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं आप सोचते हैं वही लोग आपको क्रिटिसाइज करके चले जाते हैं. आप आज पॉजिटिव वाइब लेने आए हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे नेगेटिविटी के बीच से रास्ता बना के पॉजिटिविटी को चुनना है. और आपको केवल और केवल अपने मन, अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करना है. अगर आपको लगता है कि आप जैसे भी हैं वैसे अच्छे हैं, मोटे हैं पतले हैं, मत सुनिए किसी की बात. और अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे पतला हो जाना अच्छा है और आपने वो अचीव कर लिया, फिर कोई आपको कहे ग्लो चला गया है, बूढ़ी लग रही हो, ऐसे हो रहे हैं, रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, कचरे के डब्बे में डालो. क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. और आपसे मैं कहूँगी कि

What a beautiful, beautiful song. And इसमें अनु मलिक की भी आवाज़ थी along with same हेमा सरदेसाई. अभी अभी जब रेडियो पर हम ऑफ एयर थे तो हमारे लिसनर सफ़ी का कॉल आया एंड सफ़ी ने एक वर्ड नोटिस किया इस गाने में था पागल वर्ड. एंड सफ़ी रियली डजेंट लाइक दैट वर्ड बिकॉज वो उस वर्ड से काफ़ी चिढ़ जाते हैं. एंड एक्चुअली वो वर्ड अच्छा है भी नहीं, पर कभी कभी पागल जो वर्ड होता है वो किसी को गुस्से से कहा जाता है तो वो ऑफेंसिव है, लेकिन अगर वो किसी को नोक झोंक के दौरान ऐसे कह दिया जाए तो ऑफेंसिव नहीं है. बट क्योंकि सफ़ी को पसंद नहीं, हम सफ़ी को जो पसंद है वो कर लेते हैं. सफ़ी को पसंद है शाहरुख खान और शाहरुख खान का ये खूबसूरत सा गाना इज़ डेडिकेटेड टू सफ़ी. सफ़ी एन्जॉय द फ्राइडे वाइब With me, RJ Swati, Hasti Muskurati.

0: बड़ी बेकार।
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
2: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
10: ये तारा वो तारा हर तारा।
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: वी नीड टू टॉक।
12: अब क्या हुआ?
1: Nothing, it's not you.
12: Oh no.
1: It's the distance.
12: Distance? We live 10 minutes apart.
1: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
5: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
13: Sadia!
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
17: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

देखिए, दुनिया में इतने बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, उन सब के ऊपर का शोध ये है कि किसी से कैसे प्यार हो जाता है, क्योंकि ये कभी समझ में नहीं आ रहा होता है। आपको कभी ये प्रोसेस के दौरान समझ में नहीं आएगा, जब ये हो जाएगा तब समझ में आता है। और कभी कभी आपको लगता है किसी किसी रिश्ते में आप बहुत हल्के तौर पर हैं, यानी कि आपको लगेगा कि बस इतना ही, तो क्या सरप्राइज होंगे। आप सबसे पहले सरप्राइज और शॉक्ड हो जाते हो कि ओ माई गॉड, मैं इतने अंदर तक कब चली गई और इतने अंदर तक मैं कैसे चली गई। सो इट्स अ रियल क्वेश्चन, एंड ये तो शोध का विषय है डैलस, कि इस पे बनना चाहिए कि प्यार कैसे होता है। और कभी कभी किसी बहुत ही सही व्यक्ति से भी प्यार नहीं होता, जिसका जो बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, बहुत ये है, बहुत वो है। कभी कभी किसी से भी प्यार हो जाता है और आपको उसका जवाब नहीं मिलता कि इससे प्यार हुआ तो हुआ कैसे। इसीलिए बोला कि सबसे ज्यादा शोध का विषय जो है वो यही टॉपिक है। एक्चुअली मैं एक और टॉपिक पर मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन एक गाना हम सुन लेते हैं और उस गाने के बाद डैलस डेफिनेटली आई विल कनेक्ट विथ यू एंड वी ऑल विल जॉइन टुगेदर हमारी इस बातचीत में।

एब्सोल्युटली करेक्ट है डैलिस, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला और कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला. जब ऐसा मिल जाता है ना कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत आपको प्यार करने वाला हो, बहुत अप्रिशिएट करने वाला हो और आप पर मरने वाला हो, तो ज़िंदगी केवल ज़िंदगी नहीं रह जाती, वो खूबसूरत ज़िंदगी बन जाती है. एंड ज़िंदगी को ना सिर्फ आप काटते हैं, आप ज़िंदगी को जीने भी लगते हैं. तो बस अगर कोई है ऐसा हमसफ़र तो मतलब यू आर द लकीस्ट वन. लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ है और कुछ अनलकी चीज़ें हुई हैं. जी हाँ, कभी कभी कुदरत का एक पल पूरी ज़िंदगी को बदल देता है डैलस. नेपाल में हुई इस भयंकर तबाही से हम सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया है कि एक पल में दुनिया क्या से क्या हो सकती है. ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्लड था ही नहीं, बार बार न्यूज़ में ये फ्लड की बातें की जा रही है, लेकिन पहाड़ों से अचानक आए पानी, बर्फ, मिट्टी के मलबे और तेज सैलाब के बीच कितने घर, कितनी जिंदगियां और कितने सपने उजड़ के रह गए. सब कुछ अपनी चपेट में ले गया एक पल में. ये आंधी तूफान, ये बाढ़, ये चला गया, लेकिन उसके बाद जो पीछे रह गया वो देखने से रूह जो है वो कांप जा रही है. एंड जो लोगों ने उसको लाइव विटनेस किया है या जो लोगों के लोग फंसे हुए, हम सोच भी नहीं सकते.

कि उन पर क्या गुजर रही है। तो कई फैमिलीज तो अपने उन्होंने अपनों को खो दिया है और कई लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है। अगर किसी के बारे में कुछ पता चल गया है तब तो आप बिल्कुल ही टूट चुके हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब वो चीज़ कभी रिवर्स हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ लोग जो मिसिंग हैं उनके अंदर आज भी होप बाकी है, एंड ऐसे हर किसी के लिए हमारा जो प्रेयर है वो यहाँ से ज़रूर जाना चाहिए। ये माई हार्ट गोज़ टू नेपाल एंड नेपाली फोक्स हियर इन डैलस, एंड सच में दिल से दुआएं हैं कि जिनके अपने अगर हो गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो सही सलामत मिल जाएं। हालांकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें जो लोग अगर बच भी गए हैं तो दे आर वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, बट एटलीस्ट साथ तो मिल जाएगा एक बार वापस से। एंड जो लोग छोड़कर चले गए हैं अपनों का, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन्हें किस तरह से सांत्वना दी जाए, बट आई कैन ओनली से कि हम आपका दर्द महसूस कर सकते हैं, एंड रियली माई prayer and my heart goes to all the Nepali folks here right in Dallas and also to Nepal. तो हम यही कामना करेंगे कि ऐसा कुछ भी किसी अपनों के साथ घटित ना हो। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी कल हो ना हो, जिंदगी आज है, इस वक्त है, खुलकर जी लो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। एंड डैलस, इसके कंटिन्यूएशन में ये भी बोलना चाहती हूँ कि कुछ किसी से कोई बात करनी है आज कर लो, किसी से कुछ सुलह करनी है आज कर लो, किसी को कुछ बताना है आज बता दो। क्या है इस जिंदगी में, क्या रखा है? कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये सब कुछ जिंदगी कब खत्म कर देती है ये हम नहीं जानते। इसलिए कल तो बिल्कुल भी नहीं है, जो है वो आज है और अभी इसी वक्त है।

0: Julia.
1: Dinner ready?
0: Nah, not tonight, darling. Michael?
2: डैलस, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटे जो कि आपके फेवर में ना हो और आपको नुकसान पहुंचाए, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो आपको एक नाम याद रखने की ज़रूरत है. इफ़ एन एक्सीडेंट कैन हैपन इन सेकेंड्स, यू नो दैट राइट, बट रिकवरिंग कितना टाइम ले सकता है आपको कभी कोई अंदाज़ा नहीं होता. तो इसलिए अगर आप कभी भी किसी कार एक्सीडेंट या फिर किसी भी व्हीकल एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट, स्लिप और फॉल इंसिडेंट में यू नो आपके साथ हो जाता है, तो आप अटर्नी उमर ख्वाजा का नंबर ज़रूर याद रखिए, क्योंकि आपको ये नंबर याद होना ही चाहिए. मेरे साथ हुआ और मुझे नाम तक याद नहीं था. मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ, लेकिन मैं खुद इनका नाम भूल गई थी. तो एटलीस्ट आप नाम याद रखेंगे तो नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आप विजिट कर सकते हैं attorneyumar.com पर. फ्री कंसल्टेशन के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 4693005046 पर. एंड लेट अटर्नी उमर ख्वाजा हैंडल द लीगल बैटल वाइल यू फोकस ऑन हीलिंग, एंड ही विल fight for the compensation you entitled for, and you pay nothing unless your case is won. Number ek bar phir se yaad rakh lijiye 4693005046, and attorneyumar.com is the website.

0: फन एशिया रेडियो की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बधाई। रक्षाबंधन का त्यौहार कल भी मनाया गया है ना, और आज भी मनाया जा रहा है एक्चुअली में। कल का मुहूर्त दिखाने के बाद लोग कल सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि आज भी है। बट आपको बता दूं कि भाई बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए किसी मुहूर्त की, किसी दिन की क्या जरूरत है। किसी भी दिन आप अपने भाई से अपनी रक्षा का प्रण ले सकते हैं, लेकिन भाइयों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दें। तो यार, अगर गिफ्ट की बात चल रही है तो चले जाइए तनिष्क, क्योंकि स्पेशल कलेक्शन होता है, यूनिक कलेक्शन। जैसे आपका रिश्ता बिल्कुल यूनिक है, उसी तरह से यहां पर आपको मिलता है यूनिक कलेक्शन। डायमंड्स आर इन जस्ट फॉर एवर, दे आर इवन मोर इरेसिस्टेबल ड्यूरिंग द तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय कीजिए 25% ऑफ ऑन द डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट। सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आपको बता दूं कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी रिश्ते में होती है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस काम ही नहीं करती। अगर कोई कितना भी वादा करे कि तू मुझसे मत लड़ना, तू मेरे बाल मत खींचना, तू मुझे धक्का मत देना, लेकिन ये सब टूट जाता है जब गुस्सा आता है, जब लड़ाई होती है। यही तो एक रिश्ता होता है, जहाँ पे आप खुल के अपने एक्सप्रेशंस, अपने मन की चीज़ें एक दूसरे पर उलट सकते हैं। सिबलिंग्स का जो रिश्ता होता है बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक होता है, इसलिए यूनिक गिफ्ट भी वो डिज़र्व करते हैं। तनिष्क का शोरूम जो है, वहाँ जाके विजिट कीजिए इनके स्पेशल कलेक्शंस, एंड दे दीजिए अपनों को एक खूबसूरत तोहफा, और उस तोहफे के ज़रिए वो आपको हमेशा हमेशा याद रखे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मैं भी गई, अभी वापस आई।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
5: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
6: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
7: डील कहाँ?
6: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या। डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
7: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Floors clean.
2: Check.
1: Windows clean.
2: Check.
1: Kitchen clean.
2: Check.
1: Air ducts clean.
2: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
3: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
6: वो
0: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
7: सेम ऑर्डर अगेन सेम पिज्जा सेम टेस्ट सेम स्टोरी टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a four-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
9: My name is Ritika Anand, Sanyas Nema Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
8: Experience meditation, breathwork, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants, book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.

डैलस, इस गाने से मेरे पास है आपके लिए एक सवाल, और उस सवाल के जवाब पर जो आपको मिलेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगी। देखिए, एक गाना जो मैं चलाने वाली हूँ, आपको बताना है कि वो कौन सी फिल्म से लिया गया है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानी पूरी और फ्रेश गन्ने का जूस और केटरिंग सर्विसेज, तो ये सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा। जी हाँ, एक अप स्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ विजिट करना है फूडिस्तान, जो कि लोकेटेड में है ऑबरे, जो कि लोकेटेड है ऑबरे में। तो फूडिस्तान आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर आए हैं। फूडिस्तान ब्रिंग्स एवरीथिंग दे सी ऑल इन वन प्लेस, प्लस दे ऑफर अ लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी टू एन ऑर्डर ओवर $30 विद इन 5 miles। अगर आप 5 miles के अंदर हैं और $30 से ऊपर का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो आपके घर पर फ्री डिलीवरी करते हैं। आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा फन एशिया का नाम, जिससे आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। एंड अब बताती हूँ वो बात कि आप वो लकी विनर बन सकते हैं जिनको मिलेगा ये गिव अवे जीतने का मौका। जी हाँ, वन लकी विनर विल रिसीव फ्री आइटम फ्रॉम डी वाइव रेस्टोरेंट दैट is an upscale Indian restaurant located inside Fooristan. जी हाँ, आपको एक फ्री आइटम जीतने का मौका मिल रहा है। आपको सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपने इस Fooristan का गिव अवे एक महीने तक के अंदर में ना जीता होना चाहिए। अगर आपका नाम दोबारा से डुप्लीकेट हो जाएगा देन आपको ये आपका ये जो गिव अवे है ये वॉइड कर दिया जाएगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने एक महीने के अंदर इस जो है यहाँ का फूड गिव अवे जीता नहीं होगा। अब सवाल ये है कि जो गाना मैं अब चलाने जा रही हूँ कौन सी फिल्म से लिया गया है। 9722355555, कौन सी फिल्म से ये गाना लिया गया है।

डैलस, क्या आप भी सोनू निगम के फैन हैं? क्या आपको भी उनके गाने बेहद पसंद आते हैं? क्या आप भी उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हैं? क्या आपको भी सितंबर 26 का इंतजार है डैलस? तो गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस रिवोल्यूशन, सैटरडे सितंबर 26 एट 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर विच इज लोकेटेड इन एलन. आपके फेवरेट गाने होंगे, आइकॉनिक वॉइस होगी एंड सब कुछ होगा बिल्कुल लाइव. टिकट्स आपको मिल जाएंगी टिकट मास्टर पर, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 855-360-SHOWS. जी हाँ, 855-360-SHOWS. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है हमारे अपने ओन, हमारा अपना देसी रेडियो स्टेशन वन एशिया नेटवर्क. आपको बता दूं डैलस कि इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने गाए ना सोनू निगम में. मैंने पहले एक गाना सोचा था जो कि 90s के दौर का वो गाना था ना, तू कब ये जाने की आया, क्या गाना था, क्या बात थी, क्या मिठास थी और क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं उस तरह से. लेकिन मैंने चूज़ किया है ये गाना जो कि बिल्कुल वाइब वाला गाना है, क्योंकि क्यों यू नो जो करिश्मा करीना कपूर है ना, उनमें एक अलग ही अदा है. एंड किसी किसी में ना मैंने देखा है कुछ लोग जो होते हैं वो एटीट्यूड ज़बरदस्ती शो करते हैं, एंड किसी किसी में ना वो बॉर्न एटीट्यूड होता है, और जब किसी में वो एटीट्यूड इनबिल्ट होता है डैलस, तो वो एटीट्यूड सूट करता है.

डैलेस, हमारी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, और हम भी कहते हैं डैलेस आई लव यू, क्योंकि हम भी आपको इसलिए इतना पसंद करते हैं कि आप जो है हमारे फन एशिया रेडियो के इस राइट फ्रिक्वेंसी पर ट्यून इन करते हैं और हमेशा हमें सुनते रहते हैं, और हमें सुनते हैं इसीलिए तो हमें आना अच्छा लगता है यहाँ, गाना बजाना अच्छा लगता है और बातें करनी अच्छी लगती है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यू डैलेस. एंड हमारे मूडी जी कहते थे ना लव यू डैलेस, तो गलत नहीं कहते थे भाई, कहते थे तो दिल से ही कहते थे. एंड हम भी जो कहते हैं और करते हैं वो दिल से ही करते हैं. एक रिश्ता है जो दिल का बंधा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था भाई बहन का रिश्ता, तो इस रक्षाबंधन आपको फन एशिया रेडियो एंड चौकटाव कसिनो एंड रिजॉर्ट दुरंत वॉन्ट टू हियर द मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर. तो अगर आप ये कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए कि भाई आपको एक 1 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है. व्हाट्सएप करें आप 2148377147 पर, एंड आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग डेली प्राइसेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट एंड रिसॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट कसिनो. जी हाँ, चौकटाव कसिनो एंड रिजॉर्ट दुरंत, यहाँ आप जीत सकते हैं. सिर्फ 1 मिनट का वॉइस नोट भेजना है आपको, और वहाँ पर आपको अपने स्पेशल बॉन्ड का जिक्र करना है कि कौन सी ऐसी बात है जो आपके लिए कभी ना भूलने वाली बात है, तो ये आपको करना है. इसके अलावा आप और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऑन एयर स्टोरी शेयर करनी है तो इसी वक्त आप कॉल कीजिए 9722355555. जी हाँ, मैं आपको लूँगी ऑन एयर एंड आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरी, लेकिन आपको विद इन अ मिनट शेयर करना होगा. मैं आपकी डिटेल्स ले लूँगी एंड आप तब भी ये सारे जो मौके हैं ये जीत सकते हैं. जी हाँ, डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिसॉर्ट स्टेज एंड ग्रैंड प्राइज आपको मिलेगा अपने सिबलिंग के साथ रीयूनियन करने का मौका वीकेंड में एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट दुरंत. फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आप फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेज पर भी जा सकते हैं एंड वहां चेकआउट कर सकते हैं. चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट दुरंत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. तो आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबली प्ले कीजिएगा प्लीज. आप अगर अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, मैं आपकी डिटेल्स ले लूँगी एंड आपको ये मौका मिल जाएगा. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है एंड हमको जाना पड़ेगा कमर्शियल ब्रेक की तरफ, लेकिन छोटे से समय में भी एक छोटू सा गाना प्ले करते हैं, जितना सुन पाएंगे सुन पाएंगे.

0: Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
5: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
7: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
8: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
9: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
8: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
9: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
7: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराटा चिकन टिक्का न्यू लव.
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
16: तुमसे मिलके दिल का है.
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: डेलेस आपको अगले गाने की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर 13 इयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड सेकंड लोकेशन इन फ्रिस्को इंट्रोड्यूसिंग लिनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य लिनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर इन हाउस लैब टेस्टिंग X-ray, CT scans, cardiac diagnostics, and a Himalayan Med Spa services all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. नो अपॉइंटमेंट नीडेड तो अगर आपको जाना है यहाँ पर तो आप प्लीज चले जाइए क्योंकि सातों दिन खुला है 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक एंड आपको तो पता है जो सर्विसेज मैंने आपको गिनाई हैं वो सारी सर्विसेज एक रूफ के अंदर आपको मिलेगी तो ये आपका ध्यान जरूर रखेंगे टेक्सास प्राइमरी केयर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड टू केयर फॉर यू तो जो एक गाना मेरे जहन में आ रहा है वो है शाहरुख खान का ही एक गाना एंड ये गाया गया है नीति मोहन की तगड़ी आवाज़ में

देखिए डैलस, नींद जो होती है ना वो 7 घंटे की जरूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की ब्यूटी स्लीप आपको लेनी चाहिए, भले आप लड़के क्यों ना हो, लेकिन आपके तरोताज़ा स्किन के लिए और आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपको अच्छे सपने देखकर, अच्छे से थककर खूब प्यारी नींद लेनी चाहिए ताकि आपकी सेहत बनी रहे। आपकी सेहत के साथ साथ आप अगर यहाँ देश से अलग हैं तो आपका वीज़ा स्टेटस भी करेक्टली बना रहे, जिसके लिए आपको सीमा मेहता हेल्प करती हैं। इफ़ यू आर ऑन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिस ऑफ सीमा मेहता आपको भरपूर हेल्प देंगी। अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस्ड टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, फर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, ईमेल info@seemamehtalawfirm.com, दैट्स info@seemamehtalawfirm.com, द लॉ ऑफिसेस ऑफ सीमा मेहता, एक बार फिर से दोहराऊंगी, info@seemamehtalawfirm.com। अब लीजिए, शरबतों के रंग में घुल जाइए। वैसे शरबत से याद आया, शरबत तो एक ही होती थी हमारे टाइम पर, वो थी रसना। रात बने याद है ना, रसना पहले तो एक ही ऑरेंज फ्लेवर में आती थी, फिर बाद में वो काफी सारे फ्लेवर

बात कभी कभी जो बिगड़ जाती है वो बात करने से ही बनती है। अगर आपने किसी चीज में ये सोचा कि चुप रहने से, कुछ दिन पीछे अपने आप को रख लेने से बात बन जाएगी, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि जो बात किसी चीज को कड़वाहट के साथ कहने से बिगड़ी है, वो किसी चीज को मिठास के साथ फिर से कहने से बन सकती है। इसमें चुप्पी की कोई जगह नहीं है। अगर आपने कह के बिगाड़ा है तो कह के ठीक कर लीजिए। वैसे ठीक करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। आपको ठीक करना है तो बस अपने दिल की सुनिए, ईगो साइड में रखिए, बात कीजिए, और बात करके बातों में उलझाने के बजाय बातों से सुलझाइए। जो रिश्ता है अपने आप ठीक हो जाएगा।

ऑल राइट डैलस, मैं आज के लिए लेती हूँ आपसे इजाज़त. आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. हंसी मुस्कुराती स्वाति ने आपका ड्राइव टाइम पर दिया है आपका साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे शो में काफ़ी मज़ा आया होगा एंड आपने पॉजिटिव वाइब ज़रूर फील की होगी. आप मुझे मिस करते रहिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर से एक बार जुड़ जाऊँ और हमारा और आपका साथ चलता रहे हमेशा हमेशा के लिए. ख्याल रखिए अपना एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
2: I'm loving the music.
1: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया। Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
2: I'm loving the music.
1: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
3: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Funasia Radio.
4: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशिया 104.9 FM
5: Yeah, it's coming up.

FM turns up the heat in Dallas.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: और इस तरह बल्ली को भी अपनी रानी मिल गई, वीरे की गीत से वेडिंग हो गई और शादी में घोड़ी के सबसे आगे नाचे मामा जी और भांजा जी।

0: Abi oy!
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
2: What a big ball.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: Oh my God.
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ।
0: पर क्यों?
1: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
0: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
1: क्या

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डेलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में? सब संभाल लेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
10: It's true, हम अपने सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
13: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
14: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
13: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
14: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
15: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
16: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
17: वही आवाज आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
18: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
19: तुमसे मिलके दिल का है.
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
18: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Rakshabandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte ek door se shuru hote hain aur ek anmol nishani ke saath hamesha ke liye amar ho jate hain. हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे.
3: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को.
4: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर.
5: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह. कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259.
6: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
6: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं.
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं.
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं.
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
14: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी.
15: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: जा पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
18: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
19: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts, Plano. Limited seats, free parking and meet and greet options available. Tickets at eventbrite.com. More info 214-869-2668. Presented by Focus Entertainment and Fortune.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Desi Swag. Desi Swag. Bollywood Tag. Fun Asia. Fun Asia.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
8: अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
1: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
1: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
9: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
10: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
1: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
10: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
13: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव अ 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ। विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
14: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स Dallas, because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत है माफी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपको और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, और अब जुड़े हैं आप मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहाँ मैं ले चलूंगी आपको बहुत ही बेहतरीन गीतों की ओर। कुछ करेंगे गपशप भी, और साथ साथ सुनेंगे कुछ स्पॉन्सर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस। एंड विद दैट, दिस वीक ऑफ कोर्स यू नो वी सॉ द पैसिंग अवे ऑफ द लेजेंडरी अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर actress, businesswoman, the legendary Dolly Parton. So definitely want to start my show dedicating this track to her, one of her most popular ones, Jolene.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो
1: एंड बैक टू बॉलीवुड। अगर मैं ये सवाल करूं आप मुझे जवाब देंगे? मैं सुनना चाहती हूं आपसे एट 972-235-5555। तो सवाल ये है कि हम सभी जानते हैं कि ये जो मैं नाम अभी बताने वाली हूँ वो बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट है इंडस्ट्री में, बहुत ही बेहतरीन कलाकार में हैं। तो व्हाट एल्स इज कॉमन बिटवीन देम, लेट मी नो एट 972-235-5555। अगर जो नाम है फरहान अख्तर, आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, आमिर खान एंड प्रियंका चोपड़ा, what is common in them? Let me know at 972-235-5555.

0: और आपने कभी सोचा है कि कभी अगर आप किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या स्लिप यानी कि स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट या कार और ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाएं तो आप किसे कॉल करेंगे? वेल, आई वांट टू पुट दिस नेम इनटू योर थॉट्स एंड दैट नेम इज अटॉर्नी ओमर ख्वाजा एंड अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल बी देयर टू फाइट योर केस एंड गेट यू the compensation that you deserve. They are there to help you. They're going to help you get the compensation you deserve. They're going to help you deal with insurance company, which, you know, is a very stressful process. And you know what? You want to make sure that you're compensated and they will help you with that as well. Aur ye bhi batati chalun that you don't pay until you win. So why wait? Take this number down if you don't have it already. But here it is again. 469-300-5046. You could also visit attorneyomar.com and get all the information you may need at the time that you may need it at. One more time, sun rahe aap music mantra, jisme main hoon aapke sang Sangeeta.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
0: और मैं ये सवाल दोहराती हूँ आपके लिए ताकि आप मुझे जवाब दे सकें on 972-235-5555. And the question is, what do Farhan Akhtar, Ayushman Khurana, Amitabh Bachchan, Juhi Chawla, Alia Bhatt, Ranveer Singh, Aamir Khan and Priyanka Chopra have in common besides being super duper talented actors, very very prominent in the industry? Iske alawa, what is the other talent they have that is in common? Let me know at 972-235-5555.
2: थोड़ी थोड़ी सीना दोरी, थोड़ी थोड़ी माथा भोड़ी, थोड़ा एक्शन थोड़ा जैक्सन, बुड्ढा होगा तेरा बाप।
3: ए बुड्ढे,
4: क्या बोला तू?
3: चुपचाप पीछे जाओ, लाइन में खड़े रहो।
4: हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
2: थोड़े सारे नियम तोड़े, थोड़े थोड़े सर भी फोड़े, चूहे बन के दुश्मन दौड़े, बुड्ढा होगा तेरा बाप।
3: ए बुड्ढे,
4: वो लाल बोतल देख रहा है?

0: अगर इसने टेबल पर पैर रखा ना तो बताऊंगा इसे।
1: सीधों से सीधा साधा, लुच्चों से ढेर ज्यादा, आजकल के कच्चे बच्चों ने मगर मुझे चांदा कहा।
2: और वो लोग
3: सेक्सी,
2: सुना आपने?
1: फूल खुद को कहते हैं।
4: ए बुड्ढे,
5: फूल का मैं स्कूल हूँ।
4: अरे देख भी सकता है कि नहीं?
2: जेब खुला है तेरा, बंद कर।

जब नाम लिए मैंने फरहान अख्तर आयुष्मान खुराना अमिताभ बच्चन जूही चावला आलिया भट्ट रणवीर सिंह आमिर खान एंड प्रियंका चोपड़ा वेल हम सभी इनकी शक्लें पहचानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं इनकी फिल्मों के डायलॉग जानते हैं ये कौन से फिल्मों में आए थे वो सब भी जानते हैं पर कभी कभी यही वो आर्टिस्ट हैं जो कभी कभी माइक्रोफोन भी उठाते हैं और ये हैं वो एक्टर्स जिन्होंने सिंगिंग भी की है थोड़ी सी की है दे हैव ट्राइड सिंगिंग एंड यू नो व्हाट आई वुड से सो फार द सॉन्ग वी हर्ड दे हैव बीन प्रीटी गुड एज वेल और आज के इस सेगमेंट को यानी कि अगले सेगमेंट को उन्हीं के नाम अच्छा इस अगले गाने में दो हैं आर्टिस्ट उनमें से आर्टिस्ट लेंट हिज और हर वॉइस वो बताना है आपने मुझे 9722355555 वन मोर टाइम ऑफ द टू आर्टिस्ट हु इज द सिंगर एज वेल लेट मी नो

0: बस क्या ए, क्या बोलती तू ए।
1: आमिर खान की आवाज थी इस गाने में।
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
4: Floors clean.
5: Check.
4: Windows clean.
5: Check.
4: Kitchen clean.
5: Check.
4: Air ducts clean.
5: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
6: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
7: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
8: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
9: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
8: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानीज और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
9: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
7: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
6: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया।
4: वी नीड टू टॉक।
10: अब क्या हुआ?
4: Nothing. It's not you.
10: Oh no.
4: It's the distance.
10: Distance? We live 10 minutes apart.
4: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
8: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
11: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं ही तो।
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक, और हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। और गाए हैं इन गीतों को उन्हीं एक्टर्स ने जिन पर ये गाने फिल्माए गए हैं। तो ये जो अगला गाना है वो सुनिएगा और मुझे बताइएगा किसकी आवाज़ है। और फिर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि अगले सेगमेंट से हम हमारे टॉपिक को बदलेंगे and we will celebrate National Lemon Juice Day. You heard that right, National Lemon Juice Day. Aur usi par aadharit hoga agla segment. If you have any songs on mind that come to your mind with that, let me know as well on 9722355555. Filhal aap se puch rahi hu ki ye gana kisne gaya hai, batayenge mujhe.

0: रणवीर सिंह के इस गाने ने ऐसा बना दिया सिंगिंग को, यू नो, इट डिड नॉट फील लाइक देयर वाज एनी डिफरेंस. द एक्टर एंड द सिंगर केम टुगेदर एंड बिकेम पार्ट ऑफ द कैरेक्टर, पार्ट ऑफ द मूवी एंड पार्ट ऑफ द पॉप कल्चर. एंड यू नो व्हाट, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन दिस सॉन्ग. एन एक्टर रियली डज नॉट हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर, बट दे डेफिनेटली नीड टू ओन अप द सॉन्ग they pick. And definitely Ranveer Singh and that song from the film Gully Boy come together as one. And here the actors were three and singers also three.
1: Ya está. He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer.
2: Na me samjha ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

0: बहुत ही पॉपुलर गाना, एंड इस गाने में दिखाई दिए थे तीन एक्टर्स, यानी कि ऋतिक रोशन, अभय देओल एंड फरहान अख्तर. थ्री एक्टर्स, वन सॉन्ग, ग्रेट फिल्म, एंड ऑल ऑफ देम एक्चुअली सैंग दिस सॉन्ग एज वेल. एंड यू नो व्हाट द थिंग दैट काइंड ऑफ स्टिक्स आउट फॉर मी और इज द वॉइस ऑफ फरहान अख्तर. यू नो, इफ यू नोटिस्ड, फरहान अख्तर का नाम सिर्फ एक्टर के रूप में पॉपुलर नहीं है. आई मीन, ही संग a number of songs and he seems very comfortable and very happy doing the singing as well. If you have a comment about it, let me know at 972-235-5555. If you have a song in mind where the actor has rendered voice, that too, welcome on the same number.
1: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
0: Ek film aayi thi, Dear Zindagi. और इस फिल्म में गाना था लव यू जिंदगी, विच इज ऑलमोस्ट लाइक द टाइटल सॉन्ग फॉर द फिल्म. द ओवरऑल ओवर आर्चिंग थीम आई माइट से. सो इस गाने को बहुत ही पॉपुलर किया और फिर इन्होंने बनाया एक और वर्जन ऑफ दैट सॉन्ग, एंड इट्स द क्लब मिक्स ऑफ लव यू जिंदगी. एनी आइडिया? आफ्टर ऑल दैट आई हैव सेड, आई एम गोना स्टिल आस्क यू, एनी आइडिया हु माइट हैव लेंट द वॉइस फॉर दैट वन, द क्लब मिक्स?

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। एंड ऑन दिस साइड ऑफ द शो आई एम ब्रिंगिंग टू यू येट अनदर फैंटास्टिक टॉपिक, एंड द टॉपिक हैज टू डू विद नेशनल लेमन जूस डे। यू हर्ड दैट राइट, आज है नेशनल लेमन जूस डे। सो अगर आपके जहन में है कोई गाने दैट टॉक अबाउट लिटरल लेमन यानी कि नींबू, तो वो बताएंगे आप मुझे, या तो अबाउट द लिटरल लेमन यानी कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन व्हाट डू यू डू, यानी कि इफ देयर वाज अ सिचुएशन दैट डिड नॉट गो एज यू प्लान्ड बट यू हैड यू फाउंड योरसेल्फ विद अनदर सिचुएशन इन हैंड, हाउ डिड यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, लेट मी नो। इफ यू हैव अ स्टोरी टू डू विद द लेमन्स, feel free to share with me at 972-235-5555. National Lemon Juice Day. Had you ever thought aisa bhi hai? Well, hai to manayenge saath saath, why not, right?

मुझे पता है आप सभी उन दिनों को याद कर रहे हैं जब यू नो यू आर आउट ऑन समर वेकेशन और टेरेस पे जाकर कूल ऑफ करना चाह रहे हैं और आपको याद आता है नींबू पानी. पर आपने कभी ये सोचा है कि अभी नींबू पानी इज नेवर जस्ट नींबू पानी. किसी को कभी चाहिए नींबू पानी मीठा हो, कभी चाहिए नमकीन, कोई कहे डालो उसमें काला नमक तो कोई कहे पुदीना, एंड सम पीपल वांट टू ऐड सोडा और आइस और नन, जस्ट प्लेन नींबू एंड पानी, जस्ट टू कूल ऑफ, जस्ट टू हैव फन, राइट?

0: All right. Re dil befikre. Well, when life gives you lemons, yani ki things did not go your way, you have to have fun. Waiting to hear from you soon.
1: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zaroor dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid-Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jayein aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here everything is better.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: हेलो, वीकेंड लंच इमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है?
6: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
8: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
14: Floors clean.
15: Check.
14: Windows clean.
15: Check.
14: Kitchen clean.
15: Check.
14: Air ducts clean.
15: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
13: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
16: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
16: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
16: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
17: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
16: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
18: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
19: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW, get ready to relive the magic of Kumar Shanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhumiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit evenbright.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.

0: And a warm welcome back to the final segment for this morning's Music Mantra, जिसमें रही हूँ मैं आपके संग संगीता. आपका और मेरा साथ रहता है हर सैटरडे सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक. ले आती हूँ आपके लिए हर बार एक अनोखी प्रस्तुति. और आज के इस प्रस्तुति में ले आए हैं आपके लिए, well, celebrating National Lemon Juice Day. We talked about lemons, we talked about the different things we can make with lemons. किसी ने कॉल करके कहा कि नींबू के अचार की भी याद आ गई. एब्सोल्युटली. वेल, नींबू दिया था तो नींबू का अचार भी बन जाता है, नींबू दिया तो नींबू पानी तो बन ही जाता है, शिकंजी भी बन जाती है. बट व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, देन व्हाट डू यू डू? वेल, वी टॉक्ड अबाउट सर्टन थिंग्स और सर्टन सिचुएशंस वेयर वी गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज और चैलेंजेस, आई माइट से स्लैश लेमन्स. वेल, अगर जो गाड़ी शुरू नहीं हुई कोई बात नहीं है, गाड़ी को बंद करके बैठे आप घर में आ जाइए. और अगर आज जैसा दिन हो 98 डिग्रीज का, तो यू वांट टू बी होम, सिट इनसाइड, कूल योरसेल्फ, लिसन टू ग्रेट म्यूजिक एंड लेट द डे गो ऑन. अब बच्चों ने प्लान बनाया और अदर प्लान चेंज किया और आप बाहर जाकर खाना नहीं खा पाए, No problem. What can you do? Well, you can get the food inside and make it a family night, a board game night, a time to be together with the family was the whole idea. उन्होंने कहा कि बाहर नहीं जाना. And then there's that one where, you know, you are thinking of going to this new place. Well, that didn't happen either. No worries. You call those friends over. You have to come up with solutions. And you know what? Best of all, ki hamare communities mein to is tarah ki kuch baatein hain ki koi problem aaya to phone uthaiye, kisi auntie ko phone kijiye, plan cancel hua, naya plan banaiye. Well, mehman achanak se aa gaye, fridge check kar lo, kuch na kuch to ban hi jayega.
1: Hey, baki sab theek?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: बस चल रहा है भाई.
1: व्हाट अबाउट यू?
2: हाँ चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक है ना?
2: हाँ ठीक है.
1: और तेरा?
2: बस चल रहा है. ओ, कितना मनमोहक व्यू है, इतना सन्नाटा क्यों है, देखो ना ढलता सूरज धीरे धीरे धीरे धीरे ढल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल रहा है.
1: बाकी सब ठीक?
2: बस चल

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

प्रॉब्लम आई आंटी को फोन करो, मेहमान आए फ्रिज चेक करो, बस यूं ही. व्हेन यू हैव द लेमन, यू नो व्हाट, समटाइम्स यू कैन नॉट मेक लेमनेड, बट वी मेक समथिंग विद व्हाटएवर वी हैव, राइट?

तो नेशनल लेमन जूस डे पर एक ग्लास नींबू पानी तो बनता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा लेट्स थिंक अबाउट आवर लेमन्स, अबाउट दैट प्रॉब्लम जो आपके सामने है, वो प्लान जो नहीं हुआ, वो अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई. वेल, मे बी यू कैन नॉट चेंज द लेमन, बट यू कैन डेफिनेटली डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू मेक विथ इट. चाहे फिर वो लेमनेड हो, नींबू पानी हो, चटनी हो, या हो नींबू का अचार, वो पूरी तरह आप पर निर्भर है. एंड देन बिकॉज लाइफ में गिव यू लेमन्स, बट यू गेट टू चूज द रेसिपी. विद दैट आई से उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को आपने उतना ही पसंद किया जितना मुझे अच्छा लगा आप तक ले आने के लिए. दोस्तों, ले आऊंगी फिर एक बार एक अनोखी प्रस्तुति अगले शनिवार ठीक 8 बजे. तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बच्चानी को दीजिए इजाजत. साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ फनी रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
7: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
0: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
10: ये तारा वो तारा हर तारा।
8: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: वी नीड टू टॉक।
11: अब क्या हुआ?
7: Nothing, it's not you.
11: Oh no.
7: It's the distance.
11: Distance? We live 10 minutes apart.
7: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
0: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
12: Sadia!
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
16: डैलस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम पर. मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत. वेल, जस्ट चिल में हम करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555. ट्रैवल्स शो होता है सैटरडे को हमारा जस्ट चिल में. जी हाँ, सैटरडे संडे सुबह 10 से 12 होता है मेरा आपका साथ. सैटरडे होता है ट्रैवल सेगमेंट, जहाँ ले चलती हूँ आपको एक ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं. सो वेल, आज है रक्षाबंधन स्पेशल, राइट? तो मैंने सोचा आज आपको कुछ मल्टीपल डेस्टिनेशंस पर लेकर चलूंगी, उन डेस्टिनेशंस पर जहाँ से कुछ राखी से रिलेटेड, रक्षाबंधन से रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ लेजेंड्स हों. सो अगर हैं आपके ध्यान में ऐसी कोई स्टोरीज, ऐसी कोई कहानियाँ, ऐसे कोई किस्से, तो ज़रूर कॉल करिएगा. द नंबर इज 9722355555. चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद, बहना का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार. रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.

Well, that was taken from the movie पद्मावत. एंड यस, आज हम डेडिकेट कर रहे हैं इस शो को रक्षाबंधन पर, राइट? तो रक्षाबंधन की बहुत सी फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं इंडियन ट्रेडिशन में, एंड नॉट ऑल आर लिटरली अबाउट द मॉडर्न राखी रिचुअल, लेकिन वो कनेक्ट बहुत ही ब्यूटिफुली करती हैं विद द आइडिया ऑफ प्रोटेक्शन, ऑफ अफेक्शन, ऑफ प्रोमिसज एंड ऑफ स्टैंडिंग बाय समवन, यू नो. तो अब जैसे अगर मैं पहला किस्सा अगर आपको बताना चाहूँ, राइट, तो मैं बताऊंगी आपको चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड. जी हाँ, ये कहानी है रानी कर्णावती एंड हुमायूं से रिलेटेड. अब अगेन, ये कितना सच कितना झूठ ये तो अब वही जाने, लेकिन कहानी कुछ इस तरह की है कि रानी कर्णावती ऑफ चित्तौड़, उन्होंने एक राखी भेजी थी टू मुगल एम्परर हुमायूं, जब ये जो रानी कर्णावत की जो किंगडम थी वॉज थ्रेटन्ड, आस्किंग हिम फॉर प्रोटेक्शन. एंड हुमायूं ने सपोजिटली एक्सेप्ट की थी ये राखी, एंड यू नो एक्सेप्टेड हर एज हिज सिस्टर एंड रश्ड टू हेल्प. बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है, बट अगेन हिस्टोरियंस डिबेट कि ये जो राखी वाला पोर्शन है कितना सच कितना झूठ. बट द क्रोनोलॉजी एविडेंस मेक्स अ पॉपुलर वर्जन क्वेश्चनेबल, येस. लेकिन कितना सुंदर तरीका है ना इसी हेल्प को मांगने का राखी से रिलेटेड, कि भाई बहन ने भाई को एक राखी भेजी कि भाई यू स्टैंड बाय मी एंड प्रोटेक्ट मी इन द यू नो आवर ऑफ नीड. सो इट्स बेटर डिस्क्राइब लाइक एज अ फेमस लेटर ट्रेडिशन और लेजेंड रादर देन अ वेरीफाइड हिस्टोरिकल इंसिडेंट. लेकिन है तो बात यही कि राखी बेसिकली मीन्स कि आप किसी को प्रोमिस कर रहे हैं कि यू विल ऑलवेज बी देयर टू प्रोटेक्ट एंड स्टैंड बाय.

वेल, तारा कमर्शियल एनर्जी के बारे में बताना चाहूंगी आप सभी को. राइट, ये जो तारा कमर्शियल एनर्जी है इज रियली, अगर आप टेक्सास बिजनेस रो रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन स्पेशली आपके लिए है, बिकॉज हमेशा हम ढूंढ रहे होते हैं एक स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन. राइट, सो यू कैन ट्रस्ट तारा कमर्शियल एनर्जी. दे आर प्राउडली सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस, आई मीन दे हैव बीन सर्विंग टेक्सास बिजनेसेस सिंस 2002, एंड इनके काफ़ी कंपेटिटिव रेट्स हैं, रिलायबल सर्विस है, एंड दे कैन रियली कस्टमाइज योर एनर्जी प्लान्स. तो आप तारा कमर्शियल एनर्जी को कॉल करें, द नंबर इज 8444282808, या फिर विजिट करें taraenergy.com टुडे. दैट्स taraenergy.com.

That was Chaudhary. And yes, अगला गाना प्ले करूं उसके पहले आपको मैं PMJ Jewels के बारे में भी बताना चाहूंगी, क्योंकि Dallas आपका ये जो इंतजार है हुआ खत्म. जी हाँ, PMJ Jewels is now coming to Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. भाई राखी आ गई और अब तो त्योहारों की लड़ी लगी रहेगी, सो ज्वेलरी तो भाई हमेशा ज़रूरत होती है. नहीं, कभी खुद के लिए, कभी गिफ्ट करने के लिए, कभी आपकी कोई भी आउटफिट से मैच करने के लिए, यू नो, या फिर बस यूं ही. तो PMJ Jewels को रखें याद, आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टनिंग गोल्ड, डायमंड या फिर ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni, PMJ jo hai ye naam is trusted by generations. Visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story.

आज हम जस्ट चिल में जो है राखी स्पेशल सेलिब्रेट हो रहा है, राइट? तो आज हम उन जगहों की या उन किस्से कहानियों की बातें कर रहे हैं जो राखी से रिलेटेड हों या इंस्पायर्ड हों। अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कृष्ण और द्रौपदी का, वो जो भाई बहन का रिश्ता था। सो यस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। यू नो, एक पॉपुलर लेजेंड है विच सेज कि कृष्ण ने अपनी उंगली में चोट खाई थी। जब उनका वो चक्र वापस आया तो उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई, खून बहने लगा, और द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी का एक किनार फाड़ कर और रैप्ड इट अराउंड हिज फिंगर। एंड कृष्ण भगवान जो हैं वो इतने टच हुए इस अफेक्शन से दैट ही सेड दैट ही प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट हर वेन एवर शी नीडेड हिम। एंड द स्टोरी इज पॉपुलरली कनेक्टेड विद द लेटर एपिसोड जहाँ पर कृष्ण प्रोटेक्ट द्रौपदीज डिग्निटी इन द महाभारत। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई बहन का ये जो प्यारा सा त्यौहार है कि द भाई विल बी देयर टू प्रोटेक्ट द सिस्टर वेर एवर वेन एवर नीडेड। सो ये भी बहुत ही एक पॉपुलर सी कहानी है एंड आई बिलीव कि सच सच ही था। बट अगेन, हु एम आई टू से आई बिलीव और आई डोंट। बट हाँ, ये कहानी है महाभारत में कि कृष्ण भगवान की उंगली में चोट लगी थी, खून बहने लगा था, एंड द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी या अपनी चुनरी का एक कोना फाड़ कर एंड शी टाइड इट अराउंड हिज फिंगर। और उन्होंने कहा था कि इस एक एक धागे का मैं ऋण चुकाऊंगा और बहन, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा।

कल अगला गाना प्ले करूं उसके पहले मैं आपको टेक्सास प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहूंगी। जी हाँ, 13 साल से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक जो है प्राउडली सर्व किया है उन्होंने हमारी कम्युनिटी को, एंड दे आर नाउ ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन। जी हाँ, इंट्रोड्यूसिंग यूनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। ये जो यूनॉक्सी मेडिकल है, इट ब्रिंग्स अ प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग। आपको एक्सरेज कराने हैं, सिटी स्कैंस करवाने हैं, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स या फिर हिमालयन मेडस्पा की सर्विसेज यूज करनी है। दे आर ऑल अंडर वन रूफ। दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM। यू कैन वॉक इन एनी टाइम, यू नो देयर इज नो अपॉइंटमेंट नीडेड व्हाटसोएवर। And that's Lunoxy Medical for you all.

taken from the movie Lagan, that was O Palanhare. और जब कृष्ण भगवान की बात हो ही चली है तो मुझे याद आया कि आपको मैं श्री कृष्ण ज्वेलर्स के बारे में भी क्यों ना बताती चलूं. जी हाँ, दे आर सेलिब्रेटिंग सावन मासम एंड 10 ग्लोरियस ईयर्स इन डैलस विद 10 स्पेक्टेकुलर ऑफर्स. जी हाँ, इनके पास आपके लिए 10 बहुत ही स्पेक्टेकुलर ऑफर्स हैं, फ्रॉम फ्री सिल्वर एंड गोल्ड गिफ्ट्स टू डायमंड एंड सॉलिटेयर ज्वेलरी, प्लस एक्साइटिंग सेविंग्स ऑन गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी एज वेल. सो देयर इज समथिंग स्पेशल वेटिंग फॉर यू. तो ज़रूर जाइए एंड यू नो डेफिनेटली गो टू शॉपिंग. बहुत सा प्यारा कलेक्शन है इनका. द सेलिब्रेशन इज ऑन नाउ थ्रू सेप्टेम्बर 17th एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जो कि फ्रिस्को में है. यू कैन विजिट दम एट 13145 मेन स्ट्रीट स्वीट 220 फ्रिस्को, और कॉल 430-231-1111. श्री कृष्णा ज्वेलर्स सेलिब्रेटिंग 10 स्पार्कलिंग ईयर्स इन डैलस.

Well, that was a Sonu Nigam की आवाज में अच्युतम केशवम था ना, बहुत ही खूबसूरत. अच्छा, एक और मजेदार बात है कि भाई वीकेंड आ गया है, ये तो पता ही है, तो आपको मैं फ्लेवर लाउंज के बारे में क्यों ना बताऊं. जी हाँ, द फ्लेवर लाउंज जो कि फ्रिस्को में है इज नाउ सर्विंग इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे. जी हाँ, फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिलिशियस डिशेज, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल एंड फ्रेश फ्लेवर्स दैट यू विल कीप गोइंग बैक टू. एंड ऑल दिस जस्ट फॉर 24.99 पर पर्सन. आप इंजॉय करें बफे ऑन सैटरडे एंड संडे. ये होता है 12 से 3, यू नो, यानी कि ठीक मेरे शो के बाद आप जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं. एंड दैट्स फ्रॉम 12 to 3 ऑन सैटरडेज एंड संडेज. आप अपनी फैमिली को ले जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं एंड मेक योर वीकेंड डिलिशियस एट द फ्लेवर लाउंज, 5855 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. द फ्लेवर लाउंज, गुड फूड, ग्रेट मेमोरीज. अच्छा, एंड कमिंग बैक टू जस्ट चिल, में आज जो हम रक्षाबंधन स्पेशल कर रहे हैं और मैं आपको अभी कृष्ण और द्रौपदी के ये प्यारे से रक्षाबंधन वाले रिलेशन के बारे में बता रही थी कि कैसे उन्होंने अपनी साड़ी फाड़कर उनकी, कृष्ण भगवान की जो उंगली में चोट लग गई थी, धागा वो बांधा था, साड़ी बांधी थी, एंड कृष्ण भगवान सेड कि आई विल प्रोटेक्ट यू वेन एवर वेर एवर नीडेड. और अगर बात कृष्ण भगवान की हो और हम होली की बात ना करें तो ये थोड़ी गलत बात हो जाएगी, राइट? तो मथुरा वृंदावन की होली इज लाइक known for, right? It's very popular. तो जब भी, क्योंकि ये हमारा travel segment है, तो मैं तो यही advice करूँगी कि अगर आपको मथुरा या वृंदावन जाने का मौका लग रहा है तो कोशिश करिएगा कि होली के अराउंड जाएं, because वो जो धूम है वो

0: cause you're my.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make the Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
5: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
6: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
12: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
11: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी.
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा।
15: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
16: Weekend ka plan abhi tak nahi mara. First 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein high visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
17: Radio Kanta.
18: Dallas ki dhadkan 104.9 FM.
0: Fun Asia Radio.

जी हाँ, आज हम जस्ट चिल में सेलिब्रेट कर रहे हैं राखी, राइट? सो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो राखी है सिर्फ एक धागा नहीं, ये एक वचन है कि हम एक दूसरे को हर बुराई से बचाएंगे, हर कठिनाई में साथ खड़े रहेंगे और हर खुशी को मिलकर मनाएंगे। धागा टूट सकता है लेकिन ये रिश्ते का विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। विशिंग ऑल माई लिसनर्स अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। जी हाँ, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राखी, तो मैंने सोचा कि जो अलग अलग कुछ लेजेंड्स हैं, कुछ कहानियां हैं, क्यों ना आपके साथ करूं शेयर। एंड कई बार भूल जाते हैं, सुना होता है पहले कभी बचपन में कहानी सुनी थी, लेकिन फिर लाइफ हैपन्स एंड यू फॉरगेट थिंग्स, तो कभी कभी याद आ जाए तो लगता है कि हाँ यार, ये सुना तो था। तो जैसे कि मैंने आपको कृष्ण और द्रौपदी के उस रिश्ते के बारे में बताया, आपको पता है किंग बाली एंड गॉडेस लक्ष्मी का भी एक किस्सा है। द राखी वॉज वेरी अ वेरी वेरी क्लेवर प्लान ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो कुछ हुआ इस तरह से था कि ये भी एक पौराणिक ट्रेडिशन है कि विष्णु भगवान जो है ही स्टेड विद किंग बाली, क्योंकि उन्होंने उनको ये वरदान दिया था कि ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन गॉडेस लक्ष्मी वांटेड विष्णु टू रिटर्न होम, है ना भाई? लक्ष्मी जी को था कि भाई विष्णु भगवान वापस घर आए। तो लक्ष्मी जी ने बड़ी चालाकी से, बड़ी डिप्लोमेसी से अप्रोच किया बाली को। शी टाइड अ सेक्रेट थ्रेड टू हिम एंड एक्सेप्टेड हिम एज हर ब्रदर। और भाई ने उस बदले में कहा कि भाई कुछ मांग, कोई तोहफा मांग। तो शी आस्क्ड दैट विष्णु बी अलाउड टू रिटर्न विद हर। सो बेसिकली राखी बिकेम पार्ट अफेक्शन, पार्ट डिप्लोमेसी। एंड लक्ष्मी जी ने कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं मांगी, सीधा कहा कि भाई विष्णु जी को घर ले जाने का गिफ्ट चाहिए मुझे, कि भाई मुझे तो विष्णु जी वापस अपने घर में चाहिए। दैट्स वॉट लक्ष्मी जी वॉन्टेड फ्रॉम किंग बाली।

That was Pia Se Naina Ladai Re. And before I play the next song, which is another beautiful song, main aapko dena chahti hu ek giveaway. Ab aapko jeetna padega wo giveaway. To giveaway hai Fun Pizza Kitchen ki taraf se. You know, Fun Pizza Kitchen ke pehle bata dun aapko ek jo naya launch unhone kuch kiya hai, uske bare mein bhi bata dun ki Fun Pizza Kitchen jo hai has launched a brand new Mexican inspired pizza lineup. Yeah, and these aren't just pizzas, you know, they are like a full-on flavor fiesta. From the fresh fiesta veggies to the fiery polo loco, the seafood-packed senor camarón, and the loaded mucho macho pork, every bite is bold, exciting, and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. और अब आता है आपका चांस ये गिव अवे जीतने का. सो हियर इज योर चांस टू विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन बाय आंसरिंग दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्योंकि हम राखी स्पेशल कर रहे हैं, राइट, रक्षाबंधन स्पेशल है आज का हमारा ये शो. तो आप मुझे कॉल करके बताएं बॉलीवुड के कोई भी ऐसे तीन गाने जो इस भाई बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हों. सो एनी थ्री बॉलीवुड सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू यू नो द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, रक्षाबंधन सॉन्ग. सो तीन गाने बताएं और ये $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन जीत जाएं. द स्टूडियो नंबर 9722355555.

0: right, that was Rangi Sari by Kanishk Seth and Kavita Seth. मैंने पूछा था आपसे एक सवाल कि आप मुझे कॉल करके बताएं बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी ऐसे तीन गाने विच सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. राखी से रिलेटेड हों तो और भी अच्छी बात है. एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hi, my name is Ashish.
0: Hey Ashish, how are you?
1: I'm good.
0: Awesome.
1: I'm good. Thank you.
0: Happy Rakhi.
1: Happy Rakhi.
0: All right, Ashish. So, बताइए कि कौन से तीन गाने आप बताने वाले हैं?
1: One is obviously जो मतलब वो evergreen फूलों का तारों का ये सब का कहना है.
0: Yes, that's one song. You know, I think that's the first song जो किसी को भी शायद याद आए कि यार ये अगर राखी है तो मतलब यही गाना बनता है, right? अच्छा, और बाकी के दो?
1: Yeah. One is from this Alia Bhatt and Vedang Raina recent movie
0: Jigra.
1: Tenu Sang Rakhna.
0: Ah, okay.
1: Jigra.
0: Yes. Okay.
1: Tenu Sang Rakhna.
0: Yeah. And they call.
1: And other is and the third one I would say the Dhago Se Bandha, which was an Akshay Kumar and Four Sisters movie.
0: रक्षा बंधन movie. क्या बात है?
1: नहीं मुझे पुराना वाला भी तो था ये जो फूलों को तारों का सब था. एंड अदर वन इज यू नो वो जो भैया मेरे राखी को बंधन
0: फूलों का तारों का तो आई फील लाइक इट्स लाइक अ एंथम फॉर रक्षाबंधन. नहीं आपने जीत लिया फन पिज्जा किचन की तरफ से ये गिव अवे विच इज अ $10 गिफ्ट कार्ड. सो आई टेक यू ऑफ आशीष एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले दैट तेनु संग रखना, यू नो आलिया भट्ट वाला वो जिगरा का गाना. And thank you once again for playing this giveaway and congratulations.
1: Thank you.
2: You look sad.
3: Oh yeah, little sad. Very sad, huh?

All right, that was taken from the movie Jigra, and this myth hi Alia Bhatt, a beautiful song dedicated to Rakhi. Chaliye ab aapko na main Nepal leke chalti hoon. Jahan Janai Purnima, it has some interesting traditions, especially in Nepal, and it connects nicely with Raksha Bandhan. Ji haan, ye jo Janai actually means sacred thread, aur Janai Purnima, Rakhi bhi Purnima par hi hoti hai, right? So on Janai Purnima, Hindu men from communities that traditionally wear the Janai, basically Janeu types, you know, replace the old sacred thread with a new ritually blessed one. Ye bhi Purnima ke din hi manaya jata hai, and the festival is observed, you know, on the full moon day of the Hindu month of Shravan. Raksha Bandhan ka connection kuch is tarah se hai ki jo priest hai ties a sacred protective thread called Doro around the wrist while reciting mantras, and it represents protection, blessings and spiritual well-being. You know, so सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जनेऊ पहने वही फेस्टिवल मना रहे हैं. फैमिली मेम्बर्स कैन रिसीव द प्रोटेक्शन डोरो. यू नो, ये जो पूरी फैमिली है इट कैन रिसीव दिस प्रोटेक्टिव डोरो, दिस सीक्रेट थ्रेड, मेकिंग द सेलिब्रेशन मच ब्रॉडर देन द चेंजिंग ऑफ द सीक्रेट थ्रेड. और बड़ा खास खाना भी बनता है, एंड इट्स अ बिग डील. यू नो, वन ऑफ द बेस्ट नोन Janai Purnima ट्रेडिशंस इन नेपाल इज ईटिंग क्वाथी. इट्स अ हार्टी सूप मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ स्प्राउटेड बीन्स.

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit nextgenspeakersacademy.com. That's nextgenspeakersacademy.com.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
2: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice. Sathiya!
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
8: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
9: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फनेशिया 104.9 FM।

वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी कहानी. एंड ये भी है ना कितनी अच्छी सी कहानी कि एक टाइनी थ्रेड बिकेम पॉलिटिकल सिंबोलिज्म. जी हाँ, इंस्टेड ऑफ वेपन्स और कन्फ्रंटेशन, एक सिंपल सा धागा वॉज यूज टू कम्युनिकेट दैट वी बिलोंग टूगेदर एंड डिविजन के नॉट ब्रेक आर बॉन्ड. यू नो, राखी को ये बड़ा ही सरप्राइजिंगली मॉडर्न इंटरप्रिटेशन मिला जब रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी यूज की टू रिमाइंड अस दैट रक्षा डजेंट नेसेसरीली मीन अ ब्रदर प्रोटेक्टिंग हिज सिस्टर. इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट पीपल प्रोमिसिंग टू स्टैंड टूगेदर एंड प्रोटेक्ट हार्मनी विद इन देयर कम्युनिटी. हाउ ब्यूटिफुली दिस वॉज कम्युनिकेटेड.

0: मूवी लगान दैट वाज ओ मितवा, और मैं भी कहती हूँ मितवा आ जा रे, कम टू पेज 3 E3, बिकॉज यू नो डैलस यू गॉट अ न्यू फ्लेवर एट हब 121। पेज 3 E3 की बात करें तो यहाँ आपको बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मिलेगा मॉडर्न फ्लेयर के साथ। फिर चाहे आप कबाब ऑर्डर्स करें या चाट या कोई फ्यूजन बाइट या मॉकटेल्स, यू नो यहाँ मिलेगी आपको वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच या डिनर। इट्स परफेक्ट फॉर फूडीज, इट्स परफेक्ट फॉर डेट्स एंड इट्स परफेक्ट फॉर फ्लेवर चेजर्स। सो विजिट page3eatery.com फॉर मोर डिटेल्स, एज यू कैन गो देयर एंड हैव अ वेरी गुड टाइम विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड यू नो एनी टाइम ऑफ द डे इट्स ओपन फॉर यू एंड यू कैन एन्जॉय सम डिलिशियस फूड एंड कंपनी।
1: कभी नहीं।

कुछ कुछ गाने होते हैं ना जो बड़े कैची होते हैं. आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स. यू नो, तूने मारी एंट्री, द म्यूजिक इज जस्ट सो पेपी कि आप थके हारे भी होंगे ना तो ये गाना सुनते ही थोड़ी सी एनर्जी तो आ ही जाएगी. वेल, इट्स ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू ऑल एंड प्लेइंग सम मेलोडियस सॉन्ग्स अलॉन्ग द वे. मुझे तो बहुत मज़ा आया रक्षाबंधन आप सभी के साथ सेलिब्रेट करने में, क्योंकि इतने किस्से कहानी हैं जुड़े हुए इस त्यौहार से. तो कभी कभी जब कभी कोई भूल जाए और आप याद दिला दो, तो जैसे कई कॉल्स आई कि अरे हाँ ये किस्सा तो हम भूल ही गए थे या ये बात तो हमें याद ही नहीं थी. सो यस, इट्स ऑलवेज फन रिमाइंडिंग यू ऑल ऑफ ऑल दोज फन लेजेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि राखी यानी रक्षाबंधन से रिलेटेड है. वेल, मैं मिलूंगी आपको अब कल सुबह 10 बजे इन जस्ट चिल, जहां करेंगे हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. आप कहीं जाइएगा नहीं, टू स्टे ट्यून्ड इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो, एज यहां हमारे शोज आपको एंटरटेन करते रहेंगे. कमिंग अप नेक्स्ट इज नीलम. एंड यस, जाते जाते ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि चंदन की लकड़ी, फूलों का हार, अगस्त का महीना, सावन की फुहार, भैया की कलाई, बहना का प्यार, मुबारक हो आप सबको रक्षाबंधन का ये त्यौहार. वेल, आई सी यू गाइज टुमारो. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा. दिस इज़ मधुलिका साइनिंग ऑफ.

94.9 FM फनी शहर रेडियो पे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ, मैं हूँ नीलम, आप सबकी खिदमत में मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, सैटरडे आफ्टरनून और देखिए आपकी और हमारी ये म्यूजिकल मुलाकात हो रही है। 3 बजे तक होगी ये मुलाकात, जहां 2 बजे तक आपके लिए थीम बेस्ड गाने प्रस्तुत करूंगी एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप। मधुलिका को आपने सुना बहुत ही खूबसूरत शो के साथ और आभा का आपका और हमारा साथ। सो अमूमन हम इस सेगमेंट में आपके लिए एक शब्द की बातें लाते हैं, कभी कभार हम आपके लिए कलाकारों की बातें लाते हैं कि साल में रिलीज हुई फिल्मों की बातें वगैरह वगैरह, बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सो आज के जो गाने हैं वो मुझे आप बताएंगे, हाउ अबाउट दैट। तो पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। आप पहला गाना सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा भी सुनेगा और तीसरा भी सुनेगा और बाद में मुझे बताइएगा कि आज की बातें क्या हो सकती है। सो पहला जो गाना है हमने लिया है आपके लिए मर्डर फिल्म से। जी हाँ, मर्डर फिल्म। और उसके बाद जो दूसरा गाना है वो कौन सी फिल्म से है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर एवरी सैटरडे विथ मी योर होस्ट नीलम।

मर्डर फिल्म से सुना आपने ये गीत। जी हाँ, इमरान हाशमी पे फिल्माया गया था ये गीत मल्लिका शेरावत के साथ। अब मैं आपको दूसरा गीत जो सुनवाने जा रही हूँ वो है फिल्म मर्डर टू। जी हाँ, मर्डर टू के बाद मर्डर थ्री का भी गीत आप सुनेंगे। तो आज आप मुझे बताएंगे कि क्या बातें होने वाली होगी। सोचिए जरा, इट्स सो ईजी। मर्डर का गाना आपने सुना, आप मर्डर टू का गाना सुनवाने जा रही हूँ, उसके बाद मर्डर थ्री का। तो बातें कुछ ऐसे ही होगी, लेकिन क्या बताएंगे मुझे आप।

फिर मोहब्बत करने चला और फिर हम फिल्म बनाने चले. सो आज की जो बातें होने वाली है, बहुत बहुत शुक्रिया. अभी भी हमारे कॉल जारी है. इतने सारी बातें, इतने सारे अलग अलग ख्याल आ रहे हैं आपके कि क्या बातें. बहुत लोगों ने मुझे इमरान हाशमी का बर्थडे कर दिया. किसी ने कहा कि आप क्या कोई अरेबिक जो भी बातें हो वो गाने में ला रही है. जी नहीं, ये सारी बातें नहीं है. सो बातें ये हो रही है कि देखिए, हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कभी कभार हमें फिल्म इतनी पसंद आ जाती है, हमें पसंद आती है और हम बहुत बार देखते हैं वो फिल्म, राइट. तब मेकर्स को लगता है कि इसी फिल्म को दूसरी बार क्यों ना बनाया जाए. नॉट नेसेसरीली कि कहानी आगे बढ़ती है. आप जितनी भी सीक्वल्स देखेंगे उसमें कहानी आगे नहीं बढ़ती. इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट कहानी, डिफरेंट रोल्स, लेकिन फिर भी मर्डर वन, मर्डर टू, मर्डर थ्री जैसे सीरीज चल रहती है. तो आज ऐसी कुछ फिल्मों की मैं बातें करूंगी जहां पे बहुत सारी सीक्वल्स बनी. जी हाँ, मर्डर टू से आपने गाना सुना था, चलिए अब बढ़ते हैं मर्डर थ्री की तरफ. और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी फिल्म्स की बातें करेंगे हम बॉलीवुड की जहां पे बनती है सीक्वल्स. एंड व्हेन आई से सीक्वल्स, एज आई सेड, यू नो, कहानी वो नहीं होती, ना तो किरदार वही होते, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं सीक्वल्स.

0: Okay, bye.
1: Are you hungry?
2: Mm-hmm.
1: Come with me.

मर्डर 3 से बनी थी ये खूबसूरत बातें, जी हाँ। और जब मैं सिक्वल्स की बातें करती हूँ, देखिए, अगर आपने मर्डर देखी है, मर्डर 1, मर्डर 2 नहीं देखी, मर्डर 3 डायरेक्टली देख ली, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहानी सेम नहीं होती, किरदार अलग होते हैं, उनकी जो कहानी, उनकी जो बातें होती है, वो सारी अलग होती है। सो इवन दो वी से सिक्वल्स, बट ऐसा नहीं है कि अरे मर्डर 1 देखना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन 2 एंड 3। हॉलीवुड में जब फिल्म बनती है, तो आई नो हमारे बच्चे हमें अक्सर कहते हैं कि अरे अगर आपने एवेंजर्स ये 1 नहीं देखी, तो 2 और 3 में नहीं मम्मी, कोई भी आपको बात पता नहीं चलेगी। बट इट डजेंट हैपन दैट वे इन हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। बॉलीवुड में मर्डर 1, मर्डर 2, मर्डर 3 कहीं से भी आप उठाकर देख लीजिए, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। सिमिलरली राज जो थी फिल्म, उसके भी 3 या 4 सीरीज आई थी। राज से सुनेंगे पहले गीत, बाद में राज 2, राज 3 की भी बात करेंगे। ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो, मैं हूँ नीलम आपके साथ एवरी वीकेंड।

राज टू से सुना आपने ये गीत श्रेया घोषाल के साथ सोनू निगम की आवाज। जी हाँ, अगर आपने अभी भी रेडियो ट्यून किया है, वेल आज मैं बातें कर रही हूँ आप सभी के साथ मूवीज विद सीक्वल्स। मर्डर की बातें की हमने और अब राज टू से चलते हैं राज थ्री की तरफ ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, तो बने रहिए हमारे साथ, सवाल सुनिएगा, जवाब भी आप ही दीजिएगा।

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
6: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: वी नीड टू टॉक।
8: अब क्या हुआ?
7: Nothing, it's not you.
8: Oh no.
7: It's the distance.
8: Distance? We live 10 minutes apart.
7: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
1: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
13: वेलकम बैक, दिस इज KZMB 104.9 FM Fun Asia Radio पे मैं हूं नीलम आपके साथ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद तो रख ही सकते हैं कि भाई ये जो गर्मी है हमारी 100+ degrees की, वो गर्मी अगले कुछ दिनों में या एटलीस्ट अगले कुछ हफ्तों में, सिंस वी आर ऑलमोस्ट नियर एंड ऑफ अगस्त, कुछ कम हो जाए। उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। तो वो सारी बातें हैं बिल्कुल उम्मीद की, प्यार की, मोहब्बत की, यहाँ पे और 104.9 FM। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी माई टाइम इक्विटी का। जी हाँ, माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाई, जिनको आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं क्योंकि दे ऑफर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। नंबर है उनका 4697021272 और यू कैन विजिट mytimeequity.com। उमर ख्वाजा, जी हाँ, जहाँ जहाँ कभी कभी छोटी मोटी बातें, दुर्घटनाएं हो जाती हमारे साथ जिंदगी में, तब हम सोचते कि किसको कॉल किया जाए, तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं उमर ख्वाजा जी को। नंबर है उनका 4693005046 और यू कैन विजिट attorneyomar.com। You don't pay until you win, and that is free consultation, Mr. Umar Khwaja. बहुत सारे प्रोजेक्ट को बिल्कुल हम याद करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है तो आज जो हमारी बातें हो रही है वो हो रही है बॉलीवुड फिल्म्स की सिक्वल में. और कभी कभी, जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी नहीं, अक्सर एटलीस्ट मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम सिक्वल की बात करते हैं, अब तक आपने मर्डर के गाने सुने, राज के गाने सुने, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पार्ट वन देखा है तभी आप पार्ट टू या पार्ट थ्री देख पाएंगे, क्योंकि हर कहानी अलग होती है. आई थिंक दे जस्ट यूज द नेम क्योंकि उनको पता है कि मर्डर बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट बनी थी, तो मर्डर टू मर्डर थ्री बना देंगे किसी और कलाकारों के साथ. नहीं, वही कलाकार भी होगे तो भी बढ़िया, कोई और होगे तो भी बढ़िया. सिमिलरली राज वन, राज टू, राज थ्री एंड सो ऑन. तो ऐसे ही कुछ हम गाने सुनेंगे आज जहां पर बॉलीवुड में हो गई है सिक्वल. एक या दो गाने सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जी, बिल्कुल आपकी राय लेना चाहूंगी, लेकिन इस गाने के बाद. 104.9 FM फनेशा रेडियो पे मैं हूं नीलम, आपके साथ रहती हूं हर शनिवार की दोपहर. जी हाँ, सैटरडे आफ्टरनून एज वेल एज संडे आफ्टरनून. सैटरडे आफ्टरनून जो होता है आपका और हमारा साथ, वो होता है 12 से 3 के बीच में, जहां 12 से 2 के बीच में हम जो बातें करते हैं वो होते हैं बॉलीवुड के थीम बेस्ड गाने. एंड संडे आफ्टरनून इट इज 12 से 2 रीजनल कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ ऑन संडेज. उसके बाद 1 से 2 जो बात होती है वो होती है राइट ऑन हिंदी फिल्म्स. तो चलिए, ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारे गाने हम आपको लिए लाएंगे, लेकिन अब फिलहाल मैं आपको ले चलती हूँ इस गाने की तरफ जो है 1920. जी हाँ, ये है इस फिल्म का नाम, और सुनेंगे उसी फिल्म से ये गीत आप ही के लिए ऑन 104.9.

पंडित जसराज इन द फिल्म 1920 1920 हिट हो गई तो मेकर्स को लगा कि चलिए अब 1920 रिटर्न्स कर देते हैं. सो बन गई दूसरी बार 1920 इविल रिटर्न्स.

0: 1920 इविल रिटर्न से सुना आपने गीत, और जैसे कि मैंने कहा सिक्वल 1920 की, और उसके बाद बनी थी 1920 इविल रिटर्न। एंड अगेन यू नो एज अ डिस्क्लेमर, मैं ये मानती हूँ कि सिक्वल हम बोलते हैं लेकिन वो कहानी आगे बढ़ती नहीं है, फ्रेंचाइजी कह लीजिए कि हाँ, जैसे कि बहुत सारी फिल्म बनती है, धूम, गोलमाल, मर्डर, राज वगैरह वगैरह, तो वो सारी बातें हम करेंगे यहाँ पे। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में आपको ऐसी कितनी फिल्म याद आती है, या रादर कोई ऐसे डायरेक्टर आपको याद आते हैं जिन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्म्स बनाई हैं जो सीक्वल है या फ्रेंचाइज फिल्म्स है। याद कीजिए कि कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा, मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अदर डायरेक्टर्स, ठीक है? तो बताएंगे मुझे आपकी राय 972-235-5555। कौन से ऐसे फिल्म्स, कौन से डायरेक्टर्स आपको याद आते हैं कि जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया है, और अक्सर उनकी ऐसी फिल्म्स होती है 1, 2, 3, 4 और फ्रेंचाइज बन जाती है, सीक्वल बन जाती है। तो बताएंगे आप यहाँ 104.9 FM फनीशिया रेडियो, एंड मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहूँगी 3 बजे तक। लूंगी कुछ कॉल्स ऑन है, लेकिन एक नम्र अनुरोध करना चाहूँगी आप सभी से, कृपया आपकी आवाज़ रेडियो की कम करिएगा। एंड फनीशिया, यू आर ऑन एयर। हेलो, यस, यू आर ऑन एयर, बताइए क्या है आपका जवाब। रोहित शेट्टी, यस, रोहित शेट्टी की आपको कितनी फिल्म याद है?
1: गोलमाल सिंगम,
0: आपने सारी देखी है उनकी गोलमाल?
1: नो रियली, नो,
0: इतनी हिम्मत नहीं थी, आपने ऐसा कहना चाहिए आपको। इतनी हिम्मत मुझ में नहीं होती। मैं इतनी ब्रेव, मैं भी इतनी ब्रेव नहीं हूँ आपकी तरह। फनीशिया, यू लाइव ऑन एयर। हेलो,
2: क्या है?
0: यस सर,
2: आई थिंक रोहित शेट्टी।
0: यस सर, रोहित शेट्टी। और आप कितने ब्रेव है, आपने सारी उनकी फिल्म देखी है। आर यू ब्रेव इनफ टू वॉच ऑल हिज फिल्म्स?
2: नहीं, कभी मजबूरी में, कभी सही में।
0: मजबूरी में भी ब्रेव बनना बहुत बड़ी बात है सर, हम मजबूरी में भी ब्रेव नहीं बन सकते इतना कि उनकी सारी फिल्म देख ले, बट थैंक यू। और व्हाट्स योर नेम सर?
2: रितिक।
0: थैंक यू रितिक जी, एंड बताइए क्या है आपकी राय। You are live on air?
3: Hello?
0: Yes, sir.
3: विशाल बात कर रहा हूँ।
0: जी सर, बताइए।
3: I think मुकेश भट्ट जैसे डायरेक्टर जिनके साइड
0: पर है। महेश भट्ट साहब ने भी बहुत सारी बनाई है, जैसे कि मर्डर, राज उनकी ही हुआ करती थी, एंड ऑफकोर्स आशिकी की भी बात करेंगे, लेकिन आई थिंक गोलमाल के सिंघम के और गोलमाल के रोहित शेट्टी टॉप द लिस्ट। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हर कोई इतने ब्रेव नहीं होते कि हर उनकी फ्रेंचाइज गोलमाल 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी आई है वो देख पाए। मेरी सारी लाइन्स बिजी है, माफ़ी चाहती हूँ सबको, मैं ऑनर नहीं ले पाऊँगी, लेकिन गाने भी हो जाए ना।

सिंघम रिटर्न से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत। जी हाँ, गोलमाल के रोहित शेट्टी इज द किंग ऑफ फ्रेंचाइज एंड सीक्वल। उन्हें लगता है कि गोलमाल हिट होगी तो बस, अब क्या हम हर साल एक गोलमाल देंगे हमारे ऑडियंस को, और वही वो करते आए हैं वेदर यू लाइक इट और नॉट। लेकिन वो उनकी फिल्में सक्सेसफुल भी होती है, लोग पसंद भी करते हैं, जाते भी है, और थिएटर्स की टिकट बिकती भी है। सो दैट इज़ गोलमाल। और उनके बाद उन्होंने सिंघम भी बनाई, सिंघम रिटर्न भी बनाई। तो ऑफकोर्स रोहित शेट्टी तो है ही, लेकिन जैसे कि राज की मैं बात कर रही थी, मर्डर की बात कर रही थी, महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट जी भी जो है, जो ये ब्रदर्स, टू ब्रदर्स, दे ऑल्सो डन अ वंडरफुल जॉब। आई वुडंट से वंडरफुल जॉब, लेकिन फिर भी कमर्शियली वंडरफुल जॉब, कि जहाँ पर उन्होंने भी बहुत सारी फ्रेंचाइज फिल्म बना दी है। जैसे कि राज की बात कर ले, मर्डर, एंड ऑफकोर्स आशिक की भी करेंगे हम बातें। ऑन दैट नोट, हमारे आदित्य चोपड़ा क्यों पीछे रह जाए भाई? उन्होंने सोचा कि सब लोग सीक्वल बना रहे हैं और सबकी अगर फ्रेंचाइज बन रही है तो धूम अगर सक्सेसफुल हुई तो धूम 1, 2, 3 मैं भी बना डालूंगा। एंड दैट्स व्हाट ही डिड। धूम बहुत लोगों को पसंद आई थी, उसके बाद धूम 2 भी बनी और धूम 3 भी बनी। और देखिए, वो सारी फिल्म जो थी 2, 3 धूम की जो फ्रेंचाइज, लोगों को इतनी पसंद आती है कि नाउ दे लुक फॉरवर्ड टू दैट, कि कब अब धूम 4 आ रही है।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchase. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
9: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
11: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
14: वेट, इतना सब और प्राइस?
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं हीरो.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
19: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
20: तुमसे मिलके दिल का है.
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
19: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
21: And
16: वेलकम बैक. दिस इज KZMP 104.9 FM फनेशा रेडियो पे. मैं हूँ नीलम आपके साथ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. श्री कृष्णा ज्वेलर्स को याद कर लेते हैं. जी हाँ, श्रावण मौसम में आप जा सकते हैं एंड दे आर सेलिब्रेटिंग दैट 10 ग्लोरियस ईयर्स इन डैलस, जहाँ पर आपके लिए 10 डिफरेंट ऑफर्स टिल सितंबर 17th. जी हाँ, ये सारे ऑफर्स रहेंगे आपके साथ सितंबर 17 तक. यू कैन विजिट दैम 13145 मेन स्ट्रीट स्वीट 220 इन फ्रिस्को एंड द नंबर इज 4302311111. श्री कृष्णा ज्वेलर्स सेलिब्रेटिंग 10 ईयर्स इन डैलस. एजी फिनटेक्स को भी याद कर लेते हैं. एजी फिनटेक्स 4699429888 और यू कैन विजिट agfintechs.com. वंस अगेन दैट इज एजी फिनटेक्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्स फर्म. जब भी कोई भी कंपनी या फर्म जब फास्ट ग्रो होती है, पता है क्यों? क्योंकि दे आर ऑलवेज ट्रस्टेड एंड वेरी एफिशिएंट. ट्रस्ट की बात निकली है तो चलिए डॉक्टर्स को भी याद कर ले, क्योंकि कहा जाता है कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ट्रस्टफुल होना चाहिए. आप पूरे पूरे विश्वास के साथ आपके डॉक्टर्स के साथ आपके जितने भी कंसर्न्स है, कंप्लेंट्स है, शिकायत है, वो शेयर कर पाए, राइट? तो इसी के लिए अच्छा एक नाम आपको मैं दे देती हूँ, दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर 2146662 59 और यू कैन विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम. प्रिवेंटिव केयर हो या फॉलो अप केयर हो, प्राइमरी केयर विजिट हो या फिर एनुअल केयर विजिट, दैट इज वंस नेम पैशन हेल्थ. अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, आप भूल गए थे ना कि 12 बजे से मैं होती हूँ. कोई बात नहीं, चलिए 12 से 3 होता है आपका और हमारा साथ. और आज जो मैं बातें कर रही हूँ, बॉलीवुड में जो सीक्वल्स बनती है फिल्मों की, वो बातें कर रही हूँ. फ्रेंचाइज फिल्म कह लीजिए या सीक्वल की बात कर लीजिए. अब तक हमने आपको धूम की बात की, अब तक हमने राज, मर्डर, 1920 रिटर्न्स वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी बात की. ऑफकोर्स रोहित शेट्टी की गुलमार की भी हमने बात की. बट यू नो, एज आई सेड कि हॉलीवुड की सीक्वल्स फिल्म जब होती है वो बॉलीवुड की फिल्मों से बहुत अलग होती है. हॉलीवुड की फिल्मों में कहानी आगे बढ़ती है, कुछ आपको पता चलता है कि वही कहानी है, वही किरदार है. बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता भाई. हमारे तो किरदार भी बदल सकते हैं, हमारी कहानी बिल्कुल बदल जाती है. मर्डर वन से मर्डर टू की कहानी अलग होती है, राज वन से राज टू की कहानी अलग होती है, लेकिन फिर भी हम उसे कहते हैं सीक्वल्स. तो ऐसे बहुत सारी बातें हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पे. चलिए आशिकी का गाना मैं आपको सुनवाने चाहूँगी, जो 1990 में पहली बार महेश भट्ट ने ये फिल्म बनाई थी. एंड यू नो, आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स ही हिमसेल्फ थॉट कि वही प्यार की कहानी, वही कुछ बहुत ही खूबसूरत मेलेडियस गाने क्यों ना बनाए जाए. एंड आशिकी टू भी उन्होंने बना दी. तो पहले सुनेंगे आशिकी से ये गीत एंड देन आशिकी टू.

0: आजा आजा कैसा शर्माना धीरे धीरे दिल को चुराना. यू नो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म फ्रेंचाइज, तब मैं सोच रही हूँ सीक्वल्स की, खास कर जब हम बात कर रहे हैं, कि इट इज़ नॉट दैट कहानी आगे बढ़ती, इट इज़ नॉट के वही किरदार 25 साल बाद क्या हुआ, वो आशिकी 2 में हमने ये बात देखी थी. आई थिंक वॉट एवर मेकर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर दे आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि वो ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आशिकी की बात निकले तो अच्छा हमें पता है कि आशिकी के गाने कितने अच्छे थे, कितने खूबसूरत, राइट. आज इतने 35 ईयर्स के बाद भी हम इतने ही प्यार से उसे सुनते भी है, गुनगुनाते भी है. सो जब आशिकी 2 बनाई गई, उन्होंने बिल्कुल ये कोशिश की थी कि जिस तरह से आशिकी के गाने सुपर डुपर हिट बने थे, जिस तरह से आशिकी की कहानी हमें छू गई थी, दैट रोमांटिक सॉफ्ट कहानी, राइट, वैसे ही आशिकी 2 की कहानी बने. तो कई लोगों को लगा कि नहीं, वो बात नहीं, आशिकी के जो गाने थे आशिकी 2 के वो गाने नहीं है, बट आई थिंक स्टिल इट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी मेलोडियस गाने इन द फिल्म आशिकी 2.
1: Okay, listen, I'll show you. It's in B flat.

0: आंखों आंखों में जता दे चाहो या ना चाहो। चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। 80s की जब मैं बात कर रही थी, 89 सॉरी आशिकी फिल्म जो आई थी 89 और 90, तो सीक्वल्स 90s में ज़्यादा हमने इतने नहीं देखे, लेकिन बाद में ऑफकोर्स गोलमाल की बात कर ले, मर्डर राज मोर इन लेट 90s 2000 में आने लगे। तो मुझे आप बताइए कि डू यू रिमेम्बर एनी फिल्म इन 70s 80s? मुझे एक याद आ रही है इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि जिसमें सीक्वल बनी थी और आई थिंक कहानी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टेड थी। चलिए वो सीक्वल जो थी उसे सीक्वल कह सकते हैं क्योंकि कहानी कुछ ना कुछ कनेक्टेड थी। तो मुझे बताइए इफ़ यू रिमेंबर एनी फिल्म इन 80s या 70s फॉर दैट मैटर कि जहाँ पे सीक्वल बनी हो। मुझे एक फिल्म याद आ रही है, मैं आपको बताऊंगी लेकिन आपके जवाब के बाद। वंस अगेन सवाल रिपीट कर रही हूँ कि आपको ऐसी कोई भी फिल्म याद आ रही है 80s की या पुरानी बिफोर 90s की जहाँ पे सीक्वल बनी थी। 9722355555 बताएंगे मुझे आप यहाँ पे कि कौन सी ऐसी फिल्म थी बिफोर 90 जो आपको याद है आज भी। 104.9 FM फनेश रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ, लूँगी आपके कुछ कॉल। तब तक आपको मैं सुनवाती हूँ ये बहुत ही खूबसूरत गीत इश्किया से, एंड बाद में आई देर इश्किया, लेकिन पहले आ गई इश्किया। तो वो गाना सुनने से पहले चलिए आपसे कुछ ऑनर बात कर लेते हैं। फनेश या यूर लाइव ऑन एयर।
1: हाँ नीलम जी, कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? एंड हु इज दिस?
1: दिस इज सोहेल एंड मारिया।
0: सोहेल साहब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू सर, कैसे हो आप?
1: गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, वेरी गुड,
0: परफेक्ट परफेक्ट। बताइए सर, तो आप गुड तो हम भी गुड।
1: हम हाँ 80s आप जो बोल रहे हैं हम कैसे भूल सकते हैं डॉन साहब को, डॉन।
0: हाँ लेकिन वो डॉन बाद में 2000 में आई, पता है? लाइक 80s में उसकी सिक्वल नहीं आई थी, राइट? इफ यू रिमेम्बर अमिताभ बच्चन।
1: हाँ हाँ, लेट, काफी लेट आई थी।
0: बहुत बाद में उन्होंने बनाई, फरहान जी, फरहान अख्तर ने बाद में। आई एम टॉकिंग अबाउट जब 80s में ही वो फिल्म ऐसे सिक्वल में बन गई थी। चलिए आप याद कीजिए, हाँ आप याद कीजिए। फनेशिया बताइए, आप ऑनर है?
2: Hi.
0: जी हाय,
2: आई थिंक इट्स नागिन और नागिन टू।
0: नागिन, नागिन टू में तेरी दुश्मन, यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग? यस, श्रीदेवी की फिल्म, राइट? आपने देखी थी दोनों फिल्म?
2: यस
0: यस। और आपका नाम क्या?
2: साल हो गया,
0: बहुत टाइम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। फनीशा, यू आर लाइव ऑन एयर।
3: महेश बोल रहा हूँ मैं।
0: yes,
3: आप वो सीक्वल का पूछ रहे थे।
0: हाँ हाँ,
3: तो एक मूवी याद आई मुझे, नगीना एंड निगाहें, दे वर सीक्वल।
0: yes, yes, श्रीदेवी का क्या काम था उसमें। आई वाज वेरी वेरी यंग इन स्कूल, लेकिन यू रिमेम्बर, आपने देखी थी वो फिल्म सर?
3: मैंने हाँ देखी थी, दोनों ही देखी थी, राइट?
0: जी,
3: बट आई वाज आल्सो वेरी स्मॉल एट दैट टाइम।
0: या
3: आई स्टिल रिमेम्बर द
0: एब्सोल्युटली। And you know, it's a very new trend. I think late 80s की फिल्म है ये, 88-89 की बात है जब ये नगीना आई थी, मैं तेरी दुश्मन तू मेरा दुश्मन, जब बहू बन जाती है नागिन रात को। और वो जो कहानी थी, इट वॉज सच अ हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म। बाद में कुछ सालों के बाद मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को लगा कि भाई श्रीदेवी की ये कहानी, लोगों को कहानी पसंद आ गई कि नागिन हो सकती है बहू, ऋषि कपूर भी थे उसमें, तो क्यों ना दूसरी बार बनाई जाए यही कहानी को आगे बढ़ाते हुए। एंड दैट डिड, आई थिंक निगाहें नाम था उसका। तो वेल, नगीना जितनी पॉपुलर बन गई थी, जितनी ब्लॉकबस्टर बन गई थी, लोगों ने निगाहें को नकार दिया। तब से 80s 90s में जितने भी प्रोड्यूसर मेकर्स थे उन्होंने डिस्करेजमेंट हो गए, उनको लगा कि नहीं भाई, हमारा काम नहीं है सीक्वल बनाना। लेकिन राइट आफ्टर 2000 इट वॉज लाइक पूरी भरमार हो गई थी, एक के बाद एक सारे वेकर्स ने सोचा, जैसे कि इश्किया, इश्किया लोगों को पसंद आई तो चलिए अब देड़ इश्किया भी बना देंगे।

इश्किया बहुत पसंद आई लोगों को, तो बन गई डेट इश्किया। बट अगेन एज आई सेड, कहानी बिल्कुल अलग थी। हालांकि नसीरुद्दीन शाह थे बिल्कुल, विद्या बालन नहीं थी, माधुरी दीक्षित थी इस फिल्म में, कहानी अलग, लेकिन ब्रांड वही, इश्किया से बन गई डेट इश्किया।

दबंग फिल्म से सुना आपने कि जी हाँ, और दबंग बाद में इतनी चली कि सोचा सलमान खान ने कि चलिए दबंग 2 दबंग 3 हम बना देते हैं ताकि लोग बार बार थिएटर में आए और हमें देखते रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। दबंग 2 दबंग 3 बिल्कुल बनती रही लेकिन लोग इतने गए नहीं। ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी, आखिरी सवाल एक्चुअली इस सेगमेंट का ऑन 104.9 FM।

0: आवारा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। और सलमान खान के जितने भी फैंस हो गए वो सारे सोचते होंगे कि भाई दबंग 3 आ गई, दबंग 4-5 करवा रही है ना। सीक्वल्स की मैं बात कर रही हूँ, और सीक्वल फिल्म्स में जहाँ पर मैंने जैसे कि कहा कि कैरेक्टर सेम नहीं होते, हमारे बॉलीवुड में तो अक्सर ही हुआ है, और कहानी भी इतनी कुछ आगे नहीं बढ़ती, कुछ अलग कहानी होती है, किरदार भी होते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा हमेशा नहीं भी हुआ। कुछ ऐसी फिल्म्स बनी है बॉलीवुड में कि जब वो सिक्वल कहते हैं दे डू मीन सिक्वल, सिक्वल का मतलब जो अक्सर होता है वही उन्होंने बनाई है बात, यानी कि कहानी आगे बढ़ती है। कहानी जो पार्ट वन अगर आपने देखी हो तो पार्ट टू आपको समझ में आएगा कि व्हाट हैपन इन दैट पार्ट। कहानी आगे बढ़ती है, वही किरदार भी होते हैं, वही नाम भी होते हैं। तो आप मुझे कुछ मिसाल दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है। एज आई सेड, मेजोरिटी ऑफ द फिल्म्स है जहाँ पर सिर्फ ब्रांड एक होती है, फ्रेंचाइज होती है, बट नॉट द सेम स्क्रिप्ट। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि नहीं भाई, हम तो कहानी आगे बढ़ाएंगे किरदार के साथ, ताकि लोगों को इंतज़ार रहे कि अच्छा ये फिल्म आ गई पार्ट वन पार्ट टू, सो पार्ट थ्री में क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड सीक्वल, है ना। तो चलिए आप मुझे वाकई ही में ऐसे एग्जाम्पल दीजिएगा कि जिसमें कहानी आगे बढ़ती है। कनेशिया योर लाइव ऑन है, रेडियो रेडियो रेडियो की आवाज़ काम कर दीजिएगा प्लीज़, वरना मैं आपको नहीं ऑनलाइन ले पाऊंगी। अगर आप अनुरोध करना चाहूंगी फिर से, जब भी हमें कॉल कीजिएगा प्लीज़ आपकी रेडियो की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ क्लियरली सुन पाए। 104.9 FM फनेशा रेडियो पे आप है मेरे साथ, मैं हूँ नीलम, और चलिए सुनते ये गीत एक था टाइगर से। तब तक मैं लूँगी आपके कुछ कॉल्स, और मुझे बताइएगा आप ये कहानी आगे किन किन फिल्मों में बढ़ी यहाँ पर इन बॉलीवुड। और बिल्कुल गाने तो सुनेंगे और उससे पहले आपके कॉल्स भी लेंगे। जी फनीशा, योर लाइव ऑन एयर,
1: हाय
0: हाय, बताइए क्या है आपका जवाब।
1: मेरा जवाब है द मूवी रेस।
0: ओके, रेस में कहानी आगे बढ़ी थी, यस, बाद में
1: आई थिंक रेस वन, रेस टू, रेस थ्री, तीनों में कहानी आगे बढ़ती है।
0: जी जी जी जी, और उसके अलावा कोई और आपको याद आ रही है बातें, और कोई फिल्म?
1: नहीं।
0: ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे दो या तीन फिल्म याद आ रही है, अगर आपको जितने भी नाम याद आए मुझे बिल्कुल बताइएगा। दो तीन तो बिल्कुल है, आपको कितने याद है चलिए मुझे बताइए। फनीशा योर लाइव ऑन एयर, हेलो।
2: हाय, गोलमाल।
0: गोलमाल में कहानी आगे बढ़ती है, ओके, एंड अनदर वन,
2: और धुरंधर।
0: धुरंधर, यस, धुरंधर, कैसे मैं भूल सकती हूँ धुरंधर को। थैंक यू सर फॉर रिमाइंडिंग मी दैट। फनीशा योर लाइव ऑन एयर,
3: हाय, माय नेम इज रेहाना।
0: यस नेहा, रेहाना, बताइए क्या है आपका जवाब।
3: दृश्यम, बाहुबली, दोज वर द सीक्वेंस मूवी।
0: यस यस, एब्सोल्युटली, दृश्यम की तो इंतजार में हम रहते हैं ना कि दृश्यम टू कब आएगी, एब्सोल्युटली थर्ड कि उसकी, बिकॉज यू नो इट इज सच ए ग्रिपिंग स्टोरी, राइट, जब उनकी बनती है ये कहानियां तब लगता है कि अब तीसरी फोर्थ जब भी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। सो वंडरफुल एग्जांपल्स, थैंक यू सो मच मैम, एंड लूंगी मैं एक और कॉल। फनीशा योर लाइव ऑन एयर,
4: हेलो।
0: यस सर, बताइए क्या है आपका जवाब।
4: मेरा जवाब है तो अभी धुरंधर।
0: हाँ, धुरंधर,
4: एक गाना जो आपने प्ले किया, एक था टाइगर,
0: एक था टाइगर,
4: सबसे ज्यादा,
0: यस सर,
4: सबसे ज्यादा जो अवेटेड फिल्म है आने वाली है अभी दृश्यम थ्री।
0: दृश्यम थ्री, एंड यू नो आई थिंक वो मलयाली में ऑलवेज आ गई है एनीवे, राइट,
4: आ गई है, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको नहीं देखा कि आई विल नॉट लूज इंटरेस्ट इन हिंदी,
0: बिकॉज़ यू नो आई ऑलवेज से दैट कि कैप्शन में वो बात नहीं होती एंड डबिंग में भी वो मजा नहीं आता, समहाउ यू नो इट्स नॉट द सेम, अजय देवगन
4: एंड तब्बू यू कैन नॉट कंपेयर विद एनीवन एल्स।
0: यस एब्सोल्युटली, थैंक यू सर, दृश्यम का तो इंतजार हमें भी है। एंड फनीशा योर लाइव ऑन एयर, रेडियो क्या,
4: हाय, आई थिंक कोई मिल गया है द सीक्वल,
0: कोई मिल गया, यस कोई मिल गया, सिक्वल भी है। फनीशा बताइए आपका जवाब।
5: जी आई डोंट नो किसी ने डॉन मूवी के बारे में कहा कि नहीं कहा अभी तक।
0: डॉन वन, डॉन टू, जी शाहरुख खान की ही, राइट, वो आगे बढ़ती है कहानी। यस यस, वो बढ़ती है,
5: शाहरुख खान की,
0: बिल्कुल बढ़ती है। थैंक यू सर।

नहीं यार, फ्रॉम द फिल्म एक था टाइगर, उसके बाद इतनी लोगों को पसंद आई सलमान खान के फैंस को, सलमान खान को लगा कि चलिए एक और बार टाइगर को जिंदा कर देते, टाइगर जिंदा हो गई। एंड देन आई थिंक थर्ड भी आई थी, टाइगर अभी भी जिंदा किए नहीं आए, पता नहीं आ सकती है सलमान खान ने भाई, वो 3-4 बार भी टाइगर को जिंदा कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स वो कहानी कंटिन्यूएशन में थी। उसके अलावा कोई कोई मिल गया, क्रिश एंड क्रिश 3 भी थी, जहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर रोहित मेहरा जी, हाँ वो होता किरदार का नाम, जिसकी अगली जनरेशन में उनके बेटे यानी कि क्रिश की कहानी थी इन दैट फिल्म। एंड इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव नॉट सीन दैट फिल्म, लेकिन हमारे एक लिसनर ने ऑफलाइन मुझे ये बात बताई, गैंग्स ऑफ वसईपुर जो थी उसके भी 2 पार्ट आए थे और उसमें भी कहानी आगे बढ़ती है। एंड अगेन यू नो आई हैव नॉट इवन डेयर टू वॉच दैट फिल्म, क्योंकि मैंने सुना था कि इतने सारे एक्शन उसमें सिक्वेंस है, इतनी सारी एक्शन है, लेकिन खैर वो कहानी भी अपेरेंटली आगे बढ़ती है, दैट इज़ गैंग्स ऑफ वसईपुर। लेकिन दृश्यम के बहुत सारे कॉल्स अभी भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दृश्यम 1 दृश्यम 2 वेरी वेरी ग्रिपिंग स्टोरी, और दैट वाज द रीज़न दृश्यम 3 के इंतज़ार में सभी बैठे हुए हैं। वन मूवी दैट आई हैव टू रिमेम्बर एंड हैव टू मेंशन दैट मूवी, दैट इज़ बाहुबली। बाहुबली द बिगेनिंग का जो अंत था दैट वॉज सो ग्रिपिंग, और जिस तरह से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उस फिल्म के एंड में जो सीन दिखाया था, एवरीबडी वॉज वेटिंग इंक्लूडिंग मी कि अब क्या होगा, किसने इसको मारा, व्हाट वाज दैट कैरेक्टर्स नेम। तो बाहुबली द कंक्लूजन थी उसके इंतजार में, आई थिंक इट वाज एंटायर नेशन, वो है ना पूरा भारत जानना चाहता है कि क्या हुआ, एंड दैट वाज हैपन विथ बाहुबली। धुरंधर की जो कहानी थी, वेल धुरंधर सिक्वल है, बिल्कुल है, लेकिन इट वॉज जब वो बनाई गई थी पहली बार तब 6 घंटे की फिल्म बन गई थी। एडिटिंग करते करते उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को 2 बार बनाया जाए, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 रिवेंज में हम दिखा देंगे। सो दैट वाज ऑलरेडी प्लान्ड कि कुछ महीनों के बाद ये पार्ट 2 हम दिखाएंगे, लेकिन बाहुबली जो थी वो उन्होंने आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स उसके पार्ट 2 आया था, एंड तब तक एंटायर नेशन वॉन्टेड टू नो कि भाई कंक्लूजन में होगा क्या।

बाहुबली जी हाँ। और जब ये ऑफ कोर्स गीत आप सभी को मैं सुनवा रही थी, आई ऑफ कोर्स वाज गोइंग टू टॉक अबाउट इट ड्यूरिंग माय कम्युनिटी आवर, लेकिन सिंस आई एम हियरिंग दिस प्रेयर और शिव जी की जब बात निकली है, माय प्रेयर्स फ्रॉम एंटायर फनीशा टीम अलोंग विथ अवर सीईओ गोज आउट टू ऑल द विक्टिम्स ऑफ नेपाल एंड तिब्बत फ्लडिंग। क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान जितने भी मुसाफिर अब तक मिसिंग है, जितने भी फैमिलीज है, उनके लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं एंड मैनी मैनी बेस्ट विशेज, एंड वी ऑल आर प्रेइंग फॉर सम मिरेकल्स फ्रॉम फनीशा रेडियो। बाहुबली जी हाँ, बाहुबली द बिगेनिंग एंड बाहुबली द कंक्लूजन, दो ऐसी फिल्म्स थी जो जिसके इंतज़ार में हम, एटलीस्ट आई वाज वेटिंग कि क्या होगा अब आगे, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट सीक्वल, राइट? कि जहाँ पर आपको कुछ इंतज़ार ही हो, मर्डर, राज, आशिकी और ऐसी कितनी सारी फिल्म है, जिसम वन, जिसम टू, धड़क वन, धड़क टू, ये वन, ये वो, लेकिन उसमें कहानी आगे नहीं बढ़ती, उसमें किरदार बदल जाते हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट द ब्रांडिंग, इट इज़ जस्ट अबाउट द फ्रेंचाइज नेम कि हाँ भाई ये है गोलमाल है या सिंघम है, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द डिफरेंट कैरेक्टर्स। लेकिन देन अगेन देर आर सम एग्जाम्पल्स जिसमें कहानी आगे बढ़ी, जिसके इंतज़ार में हम बैठे। हालांकि धुरंधर की जब बात निकली है, धुरंधर जब बनाई गई थी, इट वॉज नॉट मैंट फॉर टू पार्ट्स, लेकिन उसके इतने सारे सीन्स थे, इतने सारे सीक्वेंसेस थी कि द फिल्म ड्यूरेशन वाज मोर देन 6 आवर्स, एंड दैट इज़ व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू पुट इट इन टू पार्ट्स। एडिटिंग करते करते सोचा कि इसको दो भाग में हम बनाएंगे, एंड जस्ट विद इन फ्यू मंथ दे डिड डिसाइड रिलीजिंग सेकेंड पार्ट। सो धुरंधर 2 का भी बहुत इंतज़ार था, एंटायर ऑडियंस नेशन सब लोगों को था कि भाई अब ये करेंगे क्या इन द रिवेंज। तो दैट वॉज धुरंधर 2। मैं हूं नीलम, आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें सुनने के लिए। 2 बजे तक होता है ये सेगमेंट, एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप ऑन 104.9 FM।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
5: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
13: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: आर यू सीकिंग क्लैरिटी इन लाइफ, वंडरिंग व्हाट डेस्टिनी हैज इन स्टोर फॉर यू?
15: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
14: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
15: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
17: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
18: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
17: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
18: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

104.9 FM फनी रेडियो पे सुन रहे आप ये कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप विद मी योर होस्ट नीलम। कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत करती हूँ मैं नीलम हर शनिवार की दोपहर 2 से 3 के बीच में ब्रॉट टू यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर। जी हाँ, प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी, जहाँ पर हम आपके लिए आपके ही नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की बिल्कुल प्रमोशन करते हैं, किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि से भी करते हैं बातचीत हर शनिवार की दोपहर टिल 3 PM। कार्यक्रम के दौरान आप ही के पसंद के कुछ पेट्रियोटिक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल गाने होते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। बॉलीवुड के गाने भी हो सकते हैं लेकिन पेट्रियोटिक हो या इंस्पिरेशनल, ऐसे ही गाने हम आपको सुनवाते हैं टिल 3 PM। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम कार्यक्रम में अक्सर हम जब शुरुआत करते हैं किसी प्रार्थना के साथ करते हैं, लेकिन आज की प्रार्थना हम बिल्कुल डेडिकेट करना चाहेंगे उन मिसिंग फैमिलीज के लिए, उन मिसिंग ट्रैवलर्स के लिए हु आर विक्टिम ऑफ नेपाल एंड तिब्बत फ्लड। जी हाँ, हम सभी की तरफ से, फनीशा रेडियो की तरफ से, कम्युनिटी आउटरीच की तरफ से बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारी बेस्ट विशेज, एंड ऑफकोर्स वी ऑल आर टुगेदर इन दिस एंड वी आर विशिंग द बेस्ट टू एंटायर ऑल द फैमिलीज जो हाँ जहाँ भी ये विक्टिम्स है हु आर मिसिंग एंड हु आर लुकिंग फॉर देयर फैमिलीज। भगवान ईश्वर अल्लाह आपकी बिल्कुल मदद करे। और इसी के साथ ये पहली प्रार्थना डेडिकेटिंग टू द फ्लड्स विक्टिम ऑफ नेपाल एंड तिब्बत।

सरहद भले ही अलग हो सकती है लेकिन दर्द की सीमा नहीं होती। दर्द हम बांट सकते हैं एंड जहाँ पर भी ऐसी बात हो, चाहे नेपाल की बात है, तिब्बत की बात है, हमारी सारी प्रार्थनाएं इस बाढ़ से जितने जितने भी परिवार इम्पैक्टेड हुए, इंसानियत के नाते आज पूरी कम्युनिटी उनके साथ है, पूरा विश्व उनके साथ है, नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ। और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लापता लोग हैं सुरक्षित अपने घर पे लौट जाए और उनकी ज़िंदगी भी जल्दी जल्दी पटरी पर आ जाए। संकट की घड़ी में हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं उन सारे लोगों के साथ, सारे परिवारजनों के साथ है। फ्रॉम द एंटायर फनीशा कम्युनिटी आउटरीच, फ्रॉम मी, फ्रॉम सन फनीशा सीईओ। और मुझे पता है कि आपने भी जब भी ये खबर सुनी होगी, जितने भी सोशल मीडियाज पे आप पोस्ट देखते होंगे, जस्ट मन भारी हो जाता है। इट इज़ सच अ सच अ यू नो डीप ट्रेजेडी दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मोर सो बिकॉज आई वॉज देयर जस्ट अ ईयर अगो। और जब भी ये मैं देखती हूँ टीवी पे या सोशल मीडिया पे, माय हार्ट गोज आउट टू दोज विक्टम्स। वंस अगेन बहुत सारी प्रार्थनाएं उन सारे जितने भी परिवारजन, जितने भी लापता है, गुमशुदा है उनके लिए, और जितने भी परिवार के मृतक जन हैं उनको भी ईश्वर शक्ति दे। यहीं के साथ कम्युनिटी आउटरीच में एक बार फिर से मैं हूँ नीलम आपके साथ।

104.9 FM फनी रेडियो पे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप। मैं हूं नीलम, ये कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूं आप ही के लिए हर शनिवार की दोपहर और ऑफ कोर्स बहुत सारे कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स के साथ। सितंबर 3rd-6th कृष्णा जन्माष्टमी महोत्सव मनाने जा रहे हैं, बिल्कुल राधा कृष्ण टेम्पल ऑफ डैलस में, दैट इज इन एलन। वंस अगेन इट इज कृष्णा जन्माष्टमी महोत्सव सितंबर 3rd-6th। जन्माष्टमी फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये होगी छोटे बच्चों के लिए एंड एक्चुअली दिस ऑलरेडी हैपेंड, इट वाज यस्टरडे। 30th अगस्त विच इज टुमारो, पवित्र एवं राखी हिंडोला एंड दैट इज हैपनिंग श्रीनाथ धाम हवेली इन कॉपल टेक्सास टुमारो 30th अगस्त 4 PM ऑनवर्ड। अगस्त 29th विच इज टुडे, जहां पर अब बिल्कुल रक्षाबंधन के सेलिब्रेशन होने जा रही है 5:30-6:30 PM ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर इन फार्मर्स ब्रांच, दैट इज रक्षाबंधन सेलिब्रेशन 5:30 PM-6:30। संकराय फाउंडेशन प्रेजेंट करते हैं बॉलीवुड दांडिया नाइट, जी हाँ बॉलीवुड दांडिया नाइट सैटरडे अक्टूबर 3rd फ्रॉम 7-11 PM एंड इट इज हैपनिंग इन प्लेनो टेक्सास। वंस अगेन इट इज बाय संकराय फाउंडेशन बॉलीवुड दांडिया नाइट। बहुत सारे और भी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होने जा रहे हैं ऑल अक्रॉस टाउन, बहुत सारे टेम्पल्स में, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये कार्यक्रम है आपका और हम आपके लिए लाते हैं ये कार्यक्रम पूरी कम्युनिटी के लिए हर शनिवार के दोपहर।

0: सत्यमेव जयते। जी हाँ बिल्कुल, इंस्पिरेशनल बातें, कुछ पॉजिटिव बातें, मोटिवेशनल गाने और पेट्रियोटिक गाने, ये सारे बातें हम आपके लिए लाते हैं इसी सेगमेंट में जो हम आपके लिए मैं प्रस्तुत करती हूँ नीलम, एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM ऑन दिस शो विच इज द कम्युनिटी राउंड अप। नेक्स्ट वीकेंड इज अ लॉन्ग वीकेंड, लेकिन उसके अलावा एक और भी खास बात है, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट वीकेंड इज जन्माष्टमी महोत्सव एंड इट इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द टाउन, बहुत सारे मंदिर में, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर लेते रहेंगे हमसे। सेप्टेम्बर 3rd से लेके 6th तक है DFW हिंदू टेम्पल में जन्माष्टमी महोत्सव। स्टार्टिंग सेप्टेम्बर 3rd थर्सडे दे आर हैविंग स्वागतम कृष्णा सॉन्ग एंड डांस प्रेजेंटेशन, दैट इज 5:30 PM टिल 8:30 PM। फ्राइडे सेप्टेम्बर 4th भजन एट 6 PM, आरती एट 7:30 PM, झूला दर्शन एंड आरती एट 12 AM, दैट इज फ्राइडे सेप्टेम्बर 4th विच इज एक्चुअली अ जन्माष्टमी। सैटरडे सेप्टेम्बर 5th 12:30 PM भगवद गीता पारायणम। संडे सेप्टेम्बर 6th 10 AM ऑनवर्ड्स दे आर गोइंग टू हैव अ दही हांडी। जी हाँ, कृष्ण बाल लीला एंड दही हांडी सेलिब्रेशन बाय यूथ एंड दिस इज हैपनिंग एट टेम्पल कल्चरल हॉल। वंस अगेन सेप्टेम्बर 3rd टिल 6th एंड दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ जन्माष्टमी महोत्सव एट DFW हिंदू टेम्पल। September 3rd till 6th, a celebration happening at Radha Krishna Temple of Elin. September 4th, celebration happening at Flower Mound Hindu Temple. Also, Srinath Dham Haveli is also going to have September 4th celebration for Krishna Janmashtami. 4th Hindu Temple, Sri Raghunath Temple or bahut sare mandirs all across the temple. Once again, it is Friday, September 4th is actual Janmashtami night, जहाँ पर आप जा सकते हैं, आप जिस भी एरिया में है, जहाँ पर भी आपके नज़दीक कोई मंदिर है, they will be having this Janmashtami celebration and 12 o'clock midnight aarti and jula darshan. बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत सारी बातें आपसे बिल्कुल शेयर करनी है, बहुत सारे इवेंट्स की आपको जानकारी देनी है। उसके अलावा जब इवेंट की बात निकली है, अगर आप कुमार सानू के बड़े फैन है तो वेल फोकस एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, 90s के जो बहुत सारे गाने आप सुन सकते हैं उनके, एंड दिस इज हैपनिंग एट ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो। वंस अगेन दैट इज इन प्लेनो ये कॉन्सर्ट होने जा रही है आपके लिए कुमार सानू की, एंड द डेट इज।
1: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
2: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
1: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338, दैट्स 817-786-3338।
3: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
4: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर।
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
4: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
3: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
6: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.

104.9 FM फनी शरीरों पे स्वागत कर रही हूँ आपका एक बार फिर से। ये कार्यक्रम आपके लिए, ये सेगमेंट आपके लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए और बनता है आप ही से ये कार्यक्रम, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप विथ मी और होस्ट नीलम, हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM फनी या 2 to 3 PM। ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर। और कुछ नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की बिल्कुल आपको मैं जानकारी देना चाहूंगी। चेतना, जी हाँ, आपने बिल्कुल इसका नाम सुना होगा, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो बहुत सारे सपोर्टिंग रहते हैं पार्टनर्स उनके, एंड दैट इज उनका एक इवेंट है द पावर विद इन, हैपनिंग फ्राइडे सितंबर 18 एट 5 PM द डिबेट चैम्बर ओल्ड पार्क बिल्डिंग, एंड दिस इज वंस अगेन बाय चेतना द पावर विद इन, एंड द डेट इज फ्राइडे सितंबर 18 एट 5 PM द डिबेट चैम्बर ओल्ड पार्क बिल्डिंग में है, एंड इट इज इन डैलस। टिकट्स के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए, यू कैन लॉग ऑन टू chetnadfw.org, दैट इज chetnadfw.org। ऐसे बहुत सारे और भी हम आपके लिए कम्युनिटी इवेंट्स लाए हैं जिसकी जानकारी मैं आपको देती रहूंगी, एंड वंस अगेन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स गोइंग आउट टू नेपाल एंड तिब्बत फ्लड विक्टिम्स।

Was the annual gala happening on 12th of September, 5 p.m. onwards at Bharti Nivas? Once again, it is, was the annual gala happening on 12th of September, 5 p.m. onwards at Bharti Nivas? And with that, एक या और दो इवेंट्स में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी. एंड दैट इज़ अ मिरेकल्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. जी हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, बट अवर इफ़ अवर थिंकिंग इज़ पॉजिटिव, इफ़ अवर माइंड सेट इज़ पॉजिटिव, बहुत कुछ मुमकिन है ना. तो बस इसी की बात के लिए यू कैन गो टू दिस इवेंट, दैट इज़ मिरेकल्स ऑफ पॉजिटिविटी. And that is by Ramakrishna Vedanta Society of North Texas, and it is happening, of course, in Dallas Fort Worth. और ये है September में by श्री दिव्यानंदा जी. तो आप उसके लिए, and it's a free for entire community, Sunday, September 19th, 6 p.m. till 8 p.m. Once again, it is actually Saturday, September 19th, 6 till 8 p.m. ज़्यादा जानकारी के लिए you can call 408-338-8834. Or you can email them, that is dfwvedanta@gmail.com. That is dfwvedanta@gmail.com, and it is happening here in Dallas. Power of positive thinking. योगा संगम 2026 योगा भारती की तरफ से है ये आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत इवेंट. 25 इयर्स ऑफ योगा सर्विस, सितंबर 27th, 5 पीएम टिल 8 पीएम, एंड इट इज हैपनिंग एट यूनिटी ऑफ डैलस, 5 पीएम टिल 8 पीएम, सितंबर 27th बाय योगा भारती, योगा संगम 2026, एंड दैट इज हैपनिंग वंस अगेन एट यूनिटी ऑफ डैलस. And the number you can reach out is 408-341-9842. Once again, it is 408-341-9642. And the website is yogabharti.org. That is yogabharti.org. तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी बिल्कुल हम आपके लिए लाते हैं यहाँ पे हर शनिवार की दोपहर ऑन 104.9 FM, Fun Asia Radio.

आपकी पसंद के कुछ पैट्रियोटिक इंस्पिरेशनल एंड बिल्कुल स्पिरिचुअल गाने हम आपके लिए लाते हैं यहाँ पे ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, जी हाँ, बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं जन्माष्टमी के लिए और 4th of September, दैट इज़ नेक्स्ट फ्राइडे। एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड है, फ्राइडे भी है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। आपके अक्रॉस ऑल टेम्पल्स इन DFW, बहुत सारे टेम्पल्स में हो रही है ये सेलिब्रेशन, इंक्लूडिंग राधा कृष्ण टेम्पल ऑफ डालस, दैट इज़ इन एलन, DFW हिंदू टेम्पल इन अर्विंग, फोर्ट वर्थ टेम्पल, फ्लावर माउंट टेम्पल, श्री रघुनाथ टेम्पल एंड ऑल्सो BAPS टेम्पल इज ऑल्सो हैविंग अ सेलिब्रेशन अलॉन्ग विद ऑल द टेम्पल्स दोज आर नियर टू यू इन योर नेबरहुड एरिया, एंड दैट इज 4th of September जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। और आज आप बिल्कुल जा सकते हैं यमुनाष्टक डांस प्रेजेंटेशन में, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय वैष्णव्स ऑफ डालस एंड नृत्य शक्ति डांस एकेडमी, दैट इज हैपनिंग टुडे सैटरडे अगस्त 29 एट 5 PM एंस अगेन एट मेरिडियन एवेन्यू इन एलन, एक्चुअली इन फेयरव्यू, दैट इज इन फेयरव्यू टेक्सस, द मेरिडियन एवेन्यू एंड दैट इज इन फेयरव्यू टेक्सस। उसी के साथ DFW गुजारी समाज प्रस्तुत करते हैं अ वेरी वेरी गुड लिटरेचर के लिए है प्रोग्राम, श्री विनोद जोशी अलोंग विथ रईश मनियार, एंड दैट इज हैपनिंग नेक्स्ट संडे September 6th एंड इट इज हैपनिंग एट SSA ऑडिटोरियम इन UT डालस, दैट इज नेक्स्ट संडे September 6th। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम अगर आप भी सुन रहे हमें और आपकी भी कोई संस्था है धार्मिक या सामाजिक, आप भी किसी प्रयास में है किसी भी संस्था के साथ, आप वॉलंटियर है, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ एनी कमिटी, इफ़ इवन इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ कमिटी और अ वॉलंटियर, लेकिन आप जानते हैं उस संस्था को बिल्कुल और आप भी उनके प्रयास में है, तो उनकी जो भी जानकारी हम तक पहुंचाना चाहे, प्लीज़ डू रीच आउट टू अस, दैट इज़ neelam@funasia.net, वंस अगेन दैट इज़ NEELAM@funasia.net।

मैं सूफी हूँ ऑन 104.9 एफएम फनेशा रेडियो और ये है कम्युनिटी राउंड अप। जी हाँ, प्रेजेंटेशन एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM बाय मी योर होस्ट नीलम दवे। और इस कार्यक्रम में हमारी बिल्कुल कोशिश होती है कि जो भी जानकारी हम आपके लिए लाए कम्युनिटी इवेंट्स की होती है, नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की होती है, सोशल इवेंट्स की होती है, एंड दिस इज़ अ सेगमेंट फॉर यू एंड दैट इज़ फॉर एंटायर कम्युनिटी। आप ही से बनता है ये कार्यक्रम, आप ही के लिए होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। और चलिए, जाते जाते एक बहुत ही छोटी सी कहानी मुझे जो आप याद आ गई है मैं आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल में एक चिड़िया भी रहती थी, जैसे कि हर कोई रहता है, राइट? चिड़िया होती है, बड़े बड़े जानवर भी होते। तो वहाँ पर जंगल में आग लग गई, तो चिड़िया ने क्या किया, उसने भागने के बजाय सोचा कि मैं आग बुझाने के लिए कुछ करूँगी। चिड़िया तो कितनी छोटी होती है, लेकिन फिर भी अपने चोंच में पानी की एक एक बूंद भरती और वो आग पर डाल देती थी। ऐसा बार बार कर रही थी। ये सारी बातें कौवा देख रहा था दूर से और वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। अरे क्या, अरे मूर्ख चिड़िया, क्या कर रही है, एक बूंद से इतनी बड़ी आग तेरी कैसे बुझने वाली है। चिड़िया ने जवाब दिया कि देखो, मेरा प्रयास शायद आग ना बुझा सके, छोटी सी हूँ ना मैं, कितनी छोटी हूँ, चिड़िया हूँ मैं, तो मेरी चोंच शायद ये इतनी बड़ी जो आग लगी है वो ना बुझा सके, लेकिन जब भी इस आग का इतिहास दिखा जाएगा मेरा नाम जो होगा आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। हाँ, मान रही हूँ कि मैं छोटी हूँ, मुझसे कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरा जो नाम होगा ना वो होगा आग बुझाने वालों में। इसी बात के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से आज्ञा अनुमति, फिर से ये मुलाकात, ये सेगमेंट आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे ऑन 104.9 FM फनेशा रेडियो अगले शनिवार at 2 PM।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज, होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज, लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
3: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
4: अरे वो केक आया क्या?
5: डीजे कौन हैंडल करेगा?
4: डेकोर वाले को कॉल किया,
5: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
4: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
5: ऑसम इवेंट्स?
4: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
5: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
4: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
3: कॉल नाउ एट 214-725-7466, दैट्स 214-725-7466, एंड टर्न योर सेलिब्रेशन इनटू एन ऑसम इवेंट।
6: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
10: Floors clean?
11: Check.
10: Windows clean?
11: Check.
10: Kitchen clean?
11: Check.
10: Air ducts clean?
11: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
8: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
3: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
1: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। This weekend, let the flavor lounge do the cooking.
4: ये तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
12: Fun Asia hi sununga.

स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM Fun Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आपका हमारा साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक. फिल वक्त स्टूडियो की घड़ी में इट इज 49 minutes past 3 on this Saturday afternoon. And this part of our show is brought to you by Vanessa Events. Now, events to hum karte hi rehte hain, lekin how good are we with coordinating them? Now, if this is not your forte, then you need a professional event planner like Vanessa Events, jo har cheez mein aapki madad karenge. They can bring everything together in one place, jitne bhi vendors hain, chahe wo photographer ho, ya, DJ, what have you, whatever it is that you need. And they offer catering exclusively by Basera Grand, ताकि आप focus कर सकें अपने event पर और बाकी सब चीजों की responsibility Vanessa Events will take care of. So call Hari Basera today at 469-442-8770. All right, folks, ये है बोली प्यार की सेगमेंट, जिसमें बहुत प्यार से हम आपको सुनवाते हैं रीजनल लैंग्वेजेस के गाने. All you have to do is call in with your request. बस ख्याल रखें, गाना उर्दू, हिंदी या इंग्लिश का नहीं हो सकता, किसी भी रीजनल लैंग्वेज का हो सकता है. और हर रीजनल लैंग्वेज के हम सिर्फ 2 ही गाने प्ले करते हैं. हमारा ये सेगमेंट आज हम 5:30 PM तक continue करेंगे. So here you go, let's start off with this Malayalam song. Hope you like it.

0: a beautiful romantic Malayalam song. I hope you guys have liked it. आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो जी, आप ऑन एयर हैं. आपका नाम?
1: माय नेम इज मरिया.
0: जी मलिया, बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: कैन आई रिक्वेस्ट पंजाबी?
0: श्योर, बताइए क्या नाम है आपके गाने का?
1: कैन आई रिक्वेस्ट अर्जुन बेली फ्रॉम मूवी एनिमल?
0: एनिमल का अर्जुन,
1: अर्जुन, इट्स बेसिकली ARJAN, अर्जुन वेली, VAILLY.
0: All right, I will play that for you. और आप कहाँ से हमें कॉल करी हैं?
1: I'm calling from Texas, Kodosu.
0: All right, thank you so much. Here is your song. Enjoy.
2: ਖੜ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਖੜ ਕੇ ਉਸ

0: AG Fintax. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja. In association with Passion Health Primary Care.
1: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
2: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up, ye $1 million property bhi.
3: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
4: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
5: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchase. From silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
6: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर
7: इट्स ट्रू हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Beta? 95% आए?
10: हाँ मम्मी
9: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
11: मेरा
9: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masuri Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
15: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
16: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
18: तुमसे मिलके दिल का है
16: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
19: खुश आमदीद करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड आई बी एंटरटेनिंग यू टिल 6 PM. इट इज 4:05, और आज हम एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे बोली प्यार की सेगमेंट का. व्हाट दैट मींस इज इट्स गोना गो ऑन टिल 5:30. दैट्स राइट, वी आर गोना बी प्लेइंग रीजनल सॉन्ग्स till 5:30 PM. Yaad rakhiye, Boli Pyar Ki is aired every Saturday between 3:30 and 5 PM usually. Aaj it's going to continue till 5:30 PM. Regional languages se hamari murad hai tamam South Asian bhashayein, yani ke everything besides Urdu, English and Hindi. So कोई पंजाबी गाना हो या गुजराती गाना, सिंधी हो या बलोची, सराइकी हो या तेलुगु, तमिल हो या मलयालम, भोजपुरी हो या उड़िया या बंगला, इट डजंट मैटर. वट एवर इज योर नेटिव लैंग्वेज, यू वांट टू हियर अ सॉन्ग, जस्ट कॉल अस 972-235-5555. साथ में ये भी रिमाइंड कर दूं कि इस सेगमेंट में होल टाइम 5 से 10 मिनट का होता है, सो यू नीड टू बी अ लिटल पेशेंट. माय अपोलॉजीज, देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट, बिकॉज वी टेक वन कॉलर ऑन एयर एट अ टाइम, और एक वक्त में एक ही गाना प्ले किया जा सकता है कि नहीं. सो इफ यू हैव बीन प्लेस्ड ऑन होल्ड, या तो आपको मेरी आवाज सुनाई देगी या म्यूजिक की, और यू माइट हियर म्यूजिक ऑन होल्ड. रिगार्डलेस, व्हाट दैट मींस इज योर कॉल इज connected, and that means you're in queue, aap qatar mein hai, your call will be answered in the order it was received. Agar aap hang up karenge, you're gonna go further back in the line and you'll have to wait even longer. So don't get frustrated then, please do not disconnect. If your call is connected, stay on the line, stay patient, and I promise your song will be played. All right, let's go ahead and move on to our next caller, Fanisha Radio. Aap on air hai, aapka naam?
10: Hello, my name is Ash.
19: Hi Ash, boliye, kaun si language ka gana request karengi?
10: Urdu.
19: Okay, we're not doing Urdu, I'm so sorry. So no Urdu, no Hindi, no English. This is regional languages only. So...
10: Wait, are you taking Hindi? I didn't hear that part.
19: No, okay. Hindi, Urdu, English nahi, okay? That's, those are our basic languages, right? Those are everyday. That's what you hear on the radio 24/7. This segment is to showcase and promote regional languages. So we've got Punjabi, Gujarati, Sindhi, Balochi, Pashto, Arabic, Farsi, whatever. Anything but Urdu, English or Hindi. So ab bataiye, kya koi dusri language ka gana hai jo aap sunna chahengi?
10: Can I play Punjabi then?
19: Sure, absolutely. Which song do you like?
10: Could I play Sonia by Milind Gaba, please?
19: Sonia by... What's the name of the singer?
10: Milind Gaba, M-I-L-L-I-N-D.
19: Milind Gaba. All right, let's see if I can find that for you. Okay, I got it. I'm going to play it for you. And where are you calling us from?
10: Right now, I'm going to a waterfall.
19: Okay, all right. Thank you so much for your call. Here is your song. Once again, I'd like to remind everyone... We are only doing regional language songs during Boli Pyar Ki segment.

0: लज के जब कमरिया होता हजी दुनिया ही।
1: ऑलराइट, ये था हमारा भोजपुरी सॉन्ग। इट इज 16 मिनट्स पास्ट 4 ऑन दिस 29th of August 2026। उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। हमारा होल टाइम आई मस्ट से हैज गॉन अप फ्रॉम 8 to 15 मिनट्स। सो इफ यू नो यू आर गोइंग बी इन द कार फॉर दैट लॉन्ग, जस्ट बी पेशेंट एंड स्टे ऑन होल्ड, डू नॉट डिसकनेक्ट। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। थैंक यू फॉर होल्डिंग पेशेंटली। आप ऑन एयर हैं, आपका नाम?
2: सोहेलिका
1: जी, बोलिए। कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
2: मैं बंगाली सॉन्ग सुनना चाहूंगी।
1: ऑलराइट, क्या नाम है आपके गाने का?
2: आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओगो विदेशिनी।
1: आमी चीनी गो
2: चीनी गो चीनी तुम्हारे
1: ओगो विदेशिनी। अरे पुरान गान नाकि अपनी किशोर कुमार गेछे रे गानटा? আপনার গান এনজয়।

0: रहे थे आप ये सुरीला साहब बंगाली सॉन्ग एंड आवाज थी किशोर कुमार साहब की। 20 मिनट्स पास्ट 4 ये हमारा पहला बांग्ला सॉन्ग था। मैं फिर से रिकैप करते चलूं ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस के गाने हो चुके हैं। वी प्लेड मलयालम, पंजाबी, उड़िया, भोजपुरी एंड बांग्ला। पंजाबी के क्योंकि दो गाने हो चुके हैं, वी वोंट बी टेकिंग एनी मोर रिक्वेस्ट for Punjabi songs. Let's move on to our next caller, Phanisha Radio. Aap on air hai, aapka naam? Hello? Ji, aap on air hai, aapka naam?
1: Mera naam Madhuri hai.
0: Ji, Madhuri, boliye. Kaun si language ka gana request karengi?
1: Mujhe Marathi language ka gana sunna hai. All kya right. Play karengi?
0: Zarur, zarur. Yeah. Bataiye, kya naam hai aapke Marathi gane ka?
1: Ikka vajate dokya to.
0: ओके ये आपने थोड़ा सा फास्ट बोला, मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है। क्या बोला आपने? टिक टिक
1: टिक टिक वाजते डोक्या तो।
0: आई सी, या इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग राइट, एंड इट्स लाइक अ वेरी फेमस एक्टर्स हैं इसमें राइट, इस गाने में। यस, आई प्लेड इट फॉर समवन एल्स वंस, अ बड़ा प्यारा सा रोमांटिक सा गाना है। ठीक है, आई प्ले इट फॉर यू। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें? प्लेनो से बात। प्लेनो से। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर कॉल। ये रहा आपका मराठी सॉन्ग, एंजॉय।

0: that was Sundari Sanjura Tor ka sun rahe the aap ye Marathi song. Now this happens to be our second Marathi song today, and what that means is we're not going to be playing any more Marathi songs. At least we can't take any more requests because we only do two songs per language. All right, let's see who's our next caller. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
1: Sidra.
0: Ji Sidra, boliye kaun si language ka gana request karengi?
1: Sindhi gana.
0: सिंधी गाना. ओके, क्या नाम है आपके सिंधी गाने का?
1: दाने पे गाना.
0: दाने पे दाना. डिड यू वांट द कोक स्टूडियो वर्जन?
1: पता नहीं वो सिंधी में है क्या.
0: अच्छा, मैं आपका ओरिजिनल शाजिया खुश्क वाला प्ले कर दूं?
1: ओके,
0: ठीक है. एंड सिद्रा, आई डू वांट टू थैंक यू बिकॉज आई नो यू बीन होल्डिंग ऑन फॉर मोर देन 20 मिनट्स. सो आई रियली रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस. सो थैंक यू सो मच. Appreciate it. अब आप देख लो ladies and gentlemen कैसे कैसे हमारे कितने patient, इसे कहते हैं सबर, और सबर का फल मीठा होता है. So I'm definitely going to be playing this song. This happens to be the 10th language song that we have played today. We did play two languages के हमने दो दो गाने play किए. Now here is my question. अगर 10 में से 5 languages के नाम आप हमें बताएं तो आप जीतेंगे मजेदार आलू टिक्की चाट फ्रॉम होको. दैट्स राइट, होको द नेम एवरीवन नोज इन इंडिया. वेल नाउ दे आर राइट हियर इन फ्रिस्को ऑन 2693 प्रेस्टन रोड. एवरीवन नोज अबाउट देयर मजेदार सैंडविचेस, चना पूरी, चाट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिलिशियस फूड इंक्लूडिंग द होको कोल्ड कोको. सो ये सारा कुछ तो उनके पास है, लेकिन आपको फ्री में मिलेगी आलू टिक्की चाट अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, विच इज के 5 लैंग्वेजेस का नाम बताएं जिनके गाने हम आज प्ले कर चुके हैं. आप प्ले 10, आई जस्ट नीड यू टू टेल मी एनी 5 दैट वी प्लेड. एंड लेट्स एंजॉय सिद्रा'स रिक्वेस्ट, द सिंधी सॉन्ग.

0: रहे थे आप श्रेया घोषाल की आवाज में ये कनाडा सॉन्ग. होप यू गाइस एंजॉयड इट. लेट्स सी हुज आवर नेक्स्ट कॉलर. फनीशा रेडियो, आप ऑन एयर हैं. थैंक यू फॉर होल्डिंग. आपका नाम?
1: यस, माय नेम इज शोभा.
0: जी शोभा, बोलिए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: वेल, आई होप यू कैन फाइंड इट. इट्स अ श्रीलंकन सॉन्ग.
0: ओके,
1: आई मीन यू कैन डू आइदर बायला, व्हिच
0: बायला
1: इट्स कॉल्ड. A Sri Lanka song, but it's called Baila.
0: Okay.
1: The name of the song is Surangani.
0: Surangani. Okay.
1: Yeah.
0: Surangani.
1: If it's possible.
0: Okay. No. No worries.
1: Baila.
0: Okay. Yeah. I think I found it, and I'll play it for you. No worries. कहाँ से call कर रही हैं आप हमें?
1: I'm in Dallas.
0: Okay. Yeah. Thank you so much for your call. All right, guys, let's enjoy this Sri Lankan song and this part of our show brought to you by Dream Home Mortgage. If you are looking to buy a house or refinance one, give them a call. 972-245-LOAN or visit dreamhomemortgage.com.

0: has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye million dollar property bhi.
1: Hi, this is Hussain Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
2: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
7: फ्लोर्स क्लीन
8: चेक,
7: विंडोज क्लीन
8: चेक,
7: किचन क्लीन
8: चेक,
7: एयर डक्ट्स क्लीन.
8: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
9: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Ko at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And NMLS 926641.
14: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
15: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है.
14: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
14: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में.
14: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रैंच पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
16: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
17: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
18: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से ऑन 104.9 FM. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनाथ एंड आई बी एंटरटेनिंग यू टिल 6 PM. बोली प्यार की सेगमेंट आज 5:30 बजे तक कंटिन्यू रहेगा, यानी कि टिल 5:30, बिकॉज वी स्टार्टेड अ लिटिल बिट लेट, सो आई वांटेड टू मेक श्योर एवरीवन वाज एबल टू गेट इन देयर रिक्वेस्ट. हमारा होल टाइम भी अब 20 मिनट से कम होकर 10 मिनट्स हो गया. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. सो वी आर डूइंग बेटर नाउ, यू आर नॉट गोना हैव टू होल्ड दैट लॉन्ग, एटलीस्ट नॉट मोर देन 10 मिनट्स होपफुली. It's 5 minutes past 5 on this 29th of August, 2026, Saturday afternoon. So glad you decided to spend it with us here on 104.9 FM. Boli Pyar Ki segment, jo ke regional language song segment hai, har Saturday ko sun paate hain aap ye. And today it's brought to you in part by Tanishq, who is celebrating the Festival of Diamonds. You must be wondering, kya isme celebration hai? Well, you get 25% off on diamond value and making charges, plus 0% deduction on the exchange of old gold above 18 carat. So come celebrate the season with timeless sparkle at Tanishq, and their store is in Frisco. All right, अब चलते हैं next caller की तरफ. They've been holding for 10 minutes. Phanisha Radio, आप on air हैं, आपका नाम? Hello, Phanisha Radio, you're on the air, आपका नाम?
7: Hello.
18: जी, आप on air हैं, आपका नाम?
7: It's Chaitra here.
18: जी, बोलिए, कौन सी language का गाना request करेंगी?
7: I would like to request Kannada song.
18: All right, this is going to be our second Kannada song for today. क्या नाम है आपके गाने का?
7: It's a Ninna Saniha Kei title song. The movie name is Ninna Saniha Kei.
18: Okay, let's just do the song. Yeah. Okay, song name bataiye. Yes. First word.
7: Ninna Saniha Kei.
18: That's the one word.
7: N-I-N-N-A.
18: The entire thing is one word?
7: No, it's two words.
18: So Ninna, and the second word is
7: Saniha Kei. S-A-N-I-H-A-K-E.
18: Sani. गाते ओके सनी हाके ओके गॉट इट. मेरी मैं अभी भी अपनी कनाडा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है. होपली अगले हफ्ते तक आई विल बी टॉकिंग टू यू इन कनाडा. और कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
7: I'm calling from Plano.
18: All right, thank you so much. This is our second and last Kannada song, as in Kannada song की रिक्वेस्ट हम और नहीं ले पाएंगे.

0: All right, so this was Tulu language, and I'm assuming that this is a South Indian language. Exact location ka mujhe to nahi pata, maybe someone can tell me. 22 minutes past 5, you're listening to Dil Se, wishing you all a very good evening. This is Amreen Hasnat. Let's see who's our next caller. Funisha Radio, aap on air hai. Thank you for holding. Aapka naam?
1: Mera naam Ravi Shankar hua hai.
0: Si, boliye sir, kaun si language ka gana request karenge?
1: Bhojpuri gana sunna chahunga main.
0: Bhojpuri, kya naam hai aapke gane ka?
1: लागी नहीं छूटे रामा
0: लागी नहीं
1: नहीं छूटे
0: रामा ऑलराइट आई विल प्ले दैट फॉर यू और आप कहां से कॉल कर रहे हैं हमें
1: मैं प्लानर से कॉल कर रहा हूं मैम
0: ओके इज दिस कॉल्ड लाल लाल होटवा लागी नहीं इज दैट द वन ओके ठीक है नो प्रॉब्लम ऑलराइट थैंक यू सो मच ये रहा आपका भोजपुरी सॉन्ग एंड दिस इज आवर सेकंड भोजपुरी सॉन्ग फॉर टुडे

0: This was our second Bhojpuri song of the day. Let's go ahead and move on to our next caller. This is probably going to be our last song. Please, hame take me off the speakerphone. Thank you so much. Aap on air hai. Ji, aap on air hai. Aapka naam?
1: Mera naam hai Jia.
0: All right, boliye kaun si language ka gana request karenge?
1: Bengali.
0: I've already played two Bengali songs. Anything else?
1: Oh, no.
0: Okay, thank you so much. No problem. Aaj surprisingly, kisi Nepali gaane ki request nahi aayi. Kahan gaye hamare pyare pyare Nepali listeners? I'm surprised. Phanisha Radio, aap on air hai. Aapka naam?
2: Hi, mera naam Rahul hai.
0: Ji, Rahul, boliye. Kaun si language ka gaana request karenge?
2: मैं कोंकणी लैंग्वेज का सॉन्ग रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ.
0: ओके, क्या नाम है आपके गाने का?
2: गाने का नाम है इल्लो इल्लो सोरो.
0: इल्लो इल्लो सोरो. ओके, और इसका मतलब क्या है? इट साउंड्स इंटरेस्टिंग. मतलब क्या है? हेलो,
2: इसका मतलब लिटिल बिट ऑफ ड्रिंक.
0: ओह, अच्छा अच्छा, इल्लो इल्लो सोरो. ओके, और आप हमें कहाँ से? अच्छा, लिटिल लिटिल ड्रिंक. आप हमें कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं आपको फ्लावर माउंट से कॉल कर रहा हूँ.
0: ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ये रहा आपका कोंकणी सॉन्ग.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Aji, sunte ho?
4: Aji, nahi. AG, sunte hain.
5: The OG of tax planning, AG FinTax. Sunenge aapke financial concerns, denge smart solutions. Every Friday, 9:45 AM, only on Funasia Radio.
6: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: No, not another restaurant again.
7: Dude, it's Page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
6: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं।
8: Page 3 ईटरी, eat, sip, gossip, repeat.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: 90s ke gaane sirf hits nahi, हमारी यादें हैं। और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया। कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 2148692668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।

और आवारापन टू फिल्म से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप अरिजीत सिंह की आवाज़ में. ये गाना इमरान हाशमी पर पिक्चराइज किया गया था. एंड यू नो आई नो दैट देर आर सम पीपल आउट देयर हु हैव ट्यून्ड इन राइट नाउ. ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वेलकम यू. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिल से. आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात. एंड हो सकता है कि ये गाना सुनकर आपके दिल में दर्द और ज़्यादा गहरा हो गया. बिकॉज यू आर एबल टू रिलेट टू दिस सॉन्ग. देर इज़ मे बी समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ वेयर यू फील कि आपके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ अधूरापन, कुछ आवारापन. एंड यू विश कि वो जो अधूरापन आप फील कर रहे हैं, जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, वो चला जाए, उसकी जगह आपको थोड़ा सुकून मिल जाए. पर वो क्या है कि सुकून कभी भी हमें मुफ्त में नहीं मिलता. उसकी एक कीमत होती है जो इंसान को चुकानी पड़ती है. और जब हम ज़िंदगी के ज़ख्मों को भरने और ख़ुद को दोबारा जोड़ने का फ़ैसला करते हैं ना, तो शुरुआत में दर्द और तकलीफ़ का सामना हमें करना ही पड़ता है. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फटे हुए कपड़े को अगर आप सीना चाहें तो सुई का चुभना ज़रूरी होता है कि नहीं, वैसे ही अगर आप अपनी रूह, अपनी आत्मा को सुकून देना चाहते हैं, एक इंटरनल कंफर्ट और पीस, तो सब्र की जो चुभन है वो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी. और तकलीफ से डरकर भागने के बजाय आप अगर इसका सामना करेंगे ना, तो ही आपको वो सुकून मिलेगा जिसकी आप तलाश में हैं.

नेटफ्लिक्स मूवी मुसाफिर कैफे का सुन रहे थे आप ये गाना. 57 मिनट्स पास्ट 5 यानी कि जाने का आ गया है वक्त. आपसे होगी अब कल मुलाकात, सेम प्लेस सेम टाइम यानी कि राइट हियर ऑन 104.9 FM. आई होप यू एंजॉय टुडेज सेगमेंट एंड यू विल जॉइन अस अगेन टुमारो. दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ फॉर दिल से. एंड डोंट फॉरगेट, इफ यू नीड एनी हेल्प विद इवेंट प्लानिंग, रिमेंबर आई मैनेज ऑसम इवेंट्स. यू वेलकम टू call me at 214-725-7466. चाहे आपको फुल सर्विस इवेंट कोऑर्डिनेशन करवानी हो या सिर्फ जिस दिन इवेंट है उस दिन हेल्प चाहिए हो, या यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल एमसी या फीमेल डीजे, आई'd बी हैप्पी टू हेल्प. 214-725-7466 है मेरा नंबर. फील फ्री टू कॉल मी. दिस इज अमरीन हसनात साइनिंग ऑफ.

0: exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
1: कहाँ?
3: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
4: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
5: ये तारा वो तारा हर तारा,
2: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर, पंडित ईश्वर जी, 9455270897, और विजिट astrologerishwar.com।
8: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
9: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
8: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
9: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
10: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years old to game.

गुड इवनिंग डैलस, क्या हाल है आप सबके? आई एम होपिंग कि आप सब अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सिमी, और आपके साथ ना 3 घंटे साथ रहने वाली हूँ। 9 बजे तक होने वाला है ये शो, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आज का जो शो है वो डेडिकेटेड है उन लोगों के बारे में जो रिलेशनशिप में तो हैं लेकिन रिलेशनशिप का वन ऑफ द वर्स्ट विलेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि है लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बातें करेंगे। एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ आई मिस यू कहना तो ईजी है, लेकिन मिलने कब आ रहे हो या कब आ रही हो का जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जहां गुड मॉर्निंग टेक्स्ट 10 सेकंड्स में आ जाता है, लेकिन गुड मॉर्निंग हग के लिए फ्लाइट बुक करनी पड़ती है, और जहां पार्टनर के साथ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट का डोर नहीं, वीडियो कॉल ओपन करना पड़ता है। जी हाँ, यही है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, ये एक्चुअली काफी डिफिकल्ट है या फिर वर्क कर सकता है अगर दोनों के ना कनेक्शन स्ट्रांग हो, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो? What do you think about it? Call me and let me know. Number hai 972-235-5555.

आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के बारे में और बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं मुझे, बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिल रही हैं। सोहेल एंड मरियम का भी कॉल आया था और सोहेल ने कहा कि यू नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है मैरिज में फिर भी वर्कआउट कर जाता है, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टेज पे अगर आप हैं तब ज्यादा डिफिकल्टी होती है, मे बी बिकॉज अनसर्टेनिटी भी ज्यादा होती है। एंड आई टोटली अग्री कि लॉन्ग डिस्टेंस ईजी तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और बॉन्डिंग, बहुत कुछ होता है। और बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपको कुछ एक्साइटिंग हुआ रहता है आपकी लाइफ में और ऑटोमेटिकली याद आता है कि अरे यार काश वो पर्सन यहां पे होता तो आप उनके साथ शेयर करते, लेकिन आपको फोन उठा के बताना पड़ता है। और कभी कभी तो आप फोन उठा भी लिए तो एंड देन यू रिमेंबर कि टाइम जोन अलग है, वो अवेलेबल नहीं है, कहीं पे है, बिजी है, तो ये सारे फैक्टर्स भी जो है थोड़े ऐसे डिसहार्टनिंग हो जाते हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए ना, आप खुद मैं एक एग्जांपल देती हूं कि अगर आपका दिन बहुत खराब गया है और आपको चाहिए कि कोई आपसे बातें कर ले, लेकिन आपका पार्टनर जो है उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, या फिर कहता है कि यू नो अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं, कुछ भी, तो इसमें ना जो फिजिकल प्रेजेंस की वैल्यू है तब ज्यादा समझ आती है और मिसिंग फैक्टर काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी होती है, किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जो है काफी अच्छा भी साबित होता है और बाद में एनीवेज आई होप कि सारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है टर्न आउट वेल। और मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी गाइस कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं एट 972-235-5555।

आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में, और अभी अभी हमें दर्शनी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि वो जो है अपने पार्टनर से एक कोई ऑस्ट्रेलियन क्रूज पे मिली थी, और दोनों के कल्चर्स अलग थे, एक गुजराती एंड दूसरा जो है वो तमिलियन, और वहां से उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की जो है शुरुआत करी, बातें करना शुरू की। और उनका मानना है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है ना वो डिफिकल्ट तो है, मतलब हार्ड तो है, लेकिन ब्यूटिफुल भी है। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या है वो ब्यूटिफुल पार्ट, तो उन्होंने बोला कि जब आप जो फैमिली से कनेक्ट करते हो या कल्चर से कनेक्ट करते हो तो अपने आप ना आपको अच्छा सा लगने लग जाता है, एंड इट इज सो ट्रू। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का अपना एक अलग चार्म है, उसमें एक अलग ब्यूटी है। और पहले जब लॉन्ग डिस्टेंस हुआ करता था तब उस जमाने, मतलब मैं पहले के जमाने की बातें कर रही हूं, तब लेटर्स से काम चलाते थे लोग, फिर आया लैंडलाइन कॉल्स, फिर SMS वगैरह, और काफी फ्री SMS मिलने लगे लोगों को, तो वो चला। और आजकल तो वीडियो कॉल हो गया है, तो अब तो डेट भी वर्चुअल हो सकती है। आप एक साइड डिनर बना रहे हो और पार्टनर दूसरी साइड डिनर बना रहा है, तो इसी को तो कहते हैं कि चलो डिनर डेट हो गई साथ में, वर्चुअल डिनर डेट, और एक दूसरे से बातें कर रहे हो। तो टेक्स्टिंग में थोड़ा वो टोन मिस हो जाता है, या फिर नहीं समझ में आता सामने वाला कैसा फील कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, मूड कैसा है। लेकिन अगर आप वीडियो कॉल पे हो तो आप फेस देख सकते हो, आप समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर जेन्युइनली हैप्पी है या सिर्फ बस आई एम फाइन बोल रहा है या बोल रही है। तो जो है इजी तो हो गया है पहले के मुकाबले, ऐसा मैं मानती हूँ। और मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ योर व्यू, कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का अगर आज के ज़माने में बात करें तो क्या वो पहले से ज़्यादा इजी है, डिफ़िकल्ट है, कैसा है? या फिर अगर आप अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहें हमारे साथ, तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 9722355555।

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
2: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में? सब संभाल लेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
1: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fear not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Ek aur laddu le lo.
6: Thodi aur biryani.
5: Are America jaake thodi milega.
7: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
8: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259. पैशन Health Primary Care.
9: We need to talk.
10: अब क्या हुआ?
9: Nothing. It's not you.
10: Oh no.
9: It's the distance.
10: Distance? We're 10 minutes apart.
9: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
3: Irving, that long-distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches, and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं।
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं।
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं।
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
15: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
16: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में है।
16: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

भाई आपका और हमारा रिश्ता भी मोह माया वाला ही है। आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिम्मी। आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के बारे में और अब हम आ चुके हैं उसके सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर जो कि है ट्रस्ट। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना एक चीज बहुत ही ईजिली हो जाती है विच इज Overthinking. जी हाँ, अगर पार्टनर ने जो है मैसेज का रिप्लाई फटाफट नहीं किया तो आप एक दफा ऐसा सोचेंगे कि चलो बिजी होगा, लेकिन अगर आधे घंटे हो गए हो तो भी आप शायद थोड़ा सा उसको दे देंगे लिबर्टी कि चलो ठीक है मीटिंग में होगा, कुछ बिजी होगा, फोन नहीं देख रहा होगा। अगर एक घंटे हो गए तो आप सोच रहे होंगे कि फोन तो हमेशा उसके हाथ में ही होता है नॉर्मली, तो फिर ऐसे कैसे जो है नहीं देख रहे। और फिर अगर दो घंटे हो गए या तीन घंटे हो गए तो आप सोचना शुरू कर देंगे कि ओके अब तो दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है, वी नीड टू टॉक। और पता चलता है बाद में कि बेचारा आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर तो मजे में सो रही थी, वो तो इन सब से अलूफ अपनी दुनिया में अपने नींद के मजे ले रहा था या ले रही थी। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का जो ये ट्रस्ट होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। ट्रस्ट का मतलब ये है कि इनसिक्योरिटी जब आए ना तो उसके बाद भी आप कम्युनिकेशन चूज करो, कंटिन्यू करो और फालतू जो है असम्पशंस ना करें और अच्छे गाने का सिलसिला जो है जारी रहना चाहिए। तो ये लीजिए नेक्स्ट सॉन्ग। और अगर आपकी कोई स्टोरी है अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो डू लेट मी यार, मतलब कॉल कीजिए मुझे @972-235-5555।

आज हमने बहुत सारी बातें की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में और बहुत सारे उसके जो हार्डशिप्स हैं, जो टफ पार्ट है उसके बारे में डिस्कस किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो अभी बतानी रह गई है जो कि इसका बेस्ट पार्ट होता है। जी हाँ, वो है रीयूनियन। वो एयरपोर्ट का अराइवल, वो वेटिंग, वो बार बार अराइवल्स का जो स्क्रीन होता है वो चेक करना कि भाई फ्लाइट लैंड हुई क्या, इमिग्रेशन इतने देर में हो जाना चाहिए, बैग मिल गया होगा क्या अभी तक, और फिर सडनली डोर खुलता है और आपके सामने होता है वो पर्सन जिससे आपने मन से सिर्फ स्क्रीन पे ही देखा है। और ऑनेस्टली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि आप ऑर्डिनरी मोमेंट्स की वैल्यू समझने लगते हो। साथ कॉफी पीना ही स्पेशल हो जाता है, ग्रॉसरी शॉपिंग डेट बन जाती है, कार राइड मेमोरेबल हो जाती है, सोफा पे बैठ कर टीवी देखना इटसेल्फ वो अपने आप में लग्जरी लगने लगता है। जब कोई रोज सामने आपके होता है, आपके साथ होता है, तो शायद उसकी प्रेजेंस को हम जो है अंडर वैल्यू करने लगते हैं या फिर नॉर्मल समझने लगते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जब डिस्टेंस हो जाता है तो हमें समझ में आता है कि भाई उस पर्सन की जो प्रेजेंस है वो खुद में एक गिफ्ट है, वो खुद में एक लग्जरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन एनी रिलेशनशिप।

ये सॉन्ग रिक्वेस्ट आई थी सुरुमा जी की तरफ से, तो और ये हमारे टॉपिक पे तो कितना एप्ट एकदम फिट हो रहा था, तो बनता ही था कि हम ये गाना आपके लिए बजाएं। और आज हमने बहुत सारी बातें की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में, और वक्त आ गया है कि इसको अब इस सेगमेंट को क्लोज किया जाए। बट आज के कॉन्वर्सेशन से एक बात तो क्लियर है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो ईजी तो नहीं होता, कभी लोनलीनेस होती है, कभी इनसिक्योरिटी, कभी टाइम जोन्स जो है प्रॉब्लम बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक बार अपने सामने अपने प्यार को ऐसे देखने के लिए महीनों इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन जब आप जेन्युइनली एक दूसरे को चूज करते हैं ना, तो डिस्टेंस एक चैलेंज हो सकता है कि लेकिन रिलेशनशिप का एंडिंग बिल्कुल नहीं। मे बी लव का रियल टेस्ट ये नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो, मे बी रियल टेस्ट ये है कि जब आप टाइम स्पेंड करने का ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आप एक दूसरे के लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ हम जो है आज का सेगमेंट यहाँ क्लोज करते हैं, लेकिन अच्छे गाने का सिलसिला, बहुत सारे गेम्स और एक्साइटिंग प्राइजेस अभी बाकी है। तो स्टे ट्यून्ड विद आरजे सिमी ओनली ऑन फनी शो रेडियो 104.9 FM।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
4: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देयर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
5: फ्लोर्स क्लीन
6: चेक,
5: विंडोज क्लीन
6: चेक,
5: किचन क्लीन
6: चेक,
5: एयर डक्ट्स क्लीन।
6: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
7: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन